लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, ससुर उसके बीमार थे, तो हॉस्पिटल से निकल रही थी कि मैंने देखा कि एक अकेली औरत टैक्सी में है और टैक्सी आकर रुकी है और रात के 8:30-9 बजे का टाइम है और पुलिस वाला साथ निकला है। तो मैं एकदम घबरा गई कि क्या है। उस वक्त आसपास कोई और औरत नहीं थी तो पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि आइए हमारी मदद कीजिए इस खातून को अंदर ले जाने में और रखने में, स्ट्रेचर पर डालने में, क्योंकि कोई नर्स भी खातून ड्यूटी पर नहीं थी उस वक्त।

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki. Aapki Avaz. Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़िकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ ला

0: तय किया गया और फिर वहां स्पेन में जहाँ 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, उनको फिर इख्तियार दिया गया कि अगर तुमने जो है मुसलमान बन के रहना तो यहाँ से मुल्क को छोड़ दो और ईसाई बन के रहना। तो एक वक्त वहां आया कि इस्लाम बिल्कुल खत्म हो गया और वो मुसलमानों ने 800 साल में जो बड़े बड़े अड़े आजमत के मीनार कायम किए थे, मस्जिदें बनाई थी, क्या किया था, और जो आज भी मौजूद है, और वो आज इनकी मईशत का एक बहुत बड़ा जरिया और सबब है कि वो मुसलमानों के वो चीजें। और उस वक्त में जो है जब इस्लाम खत्म हुआ, आज दोबारा आज स्पेन के लोग जो है उनको जब याद आ रहा है कि हमसे हमारे आबाओ अजदाद तो मुसलमान थे, और आज जब इस्लाम की खूबियां नजर आ रही हैं, आज बड़ी तेजी से इस्लाम आज जो है स्पेन में आज फैल रहा है, और इस वजह लोगों को जो है खतरा है इनको कि भाई दोबारा इस्लामी जो है रो दोबारा सैलाब ये इस्लाम का आ जाए, तो इस्लाम ऐसा को रोक भी नहीं सकता इसको, और कोई इस पर मजबूर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदे का और रब का मामला है, अल्लाह ताला जिसको फेर देते हदायत दे देते हैं। तो लेकिन हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि ये जो इस्लाम फोबिया या इस मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपोगंडा किया जाता है, तो हमारा कुरान ये बताता है कि नहीं, तो अल्लाह जी खलाकाकुम वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है। हाँ, उसमें से बाद लोग पर काफर हो गए, बाद लोग मुस्लिम ईमान पर बाकी रहे, वल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको खूब देख रहा है। वो जो आदमी ईमान वाला है तो जो ईमान के काम कर अल्लाह उसको देख रहा है, और जो ईमान वाला जो है वो ये मोमिन होकर गलत काम उसको भी अल्लाह ताला देख रहा है, और जो काफर है उसको भी अल्लाह ताला देख रहा है। जब वो देख रहा है तो फिर क्या करेगा वो, फिर आखिर में तुम्हारे जो है वो फैसला करेगा तुम्हारे आमाल। दुनिया में गोया के किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी को उसके दीन मजहब की वजह से को सजा दे और उसको को मजबूर करे, नहीं, ये जिसने बनाया है ये उसका काम है, वही अपने बंदे को उसको जो है पूछेगा, मुहासबा करेगा। इसलिए किसी इंसान को दखल नहीं है कि वो किसी को वो ये कहे। और बात ये भी याद रखे, जहां मुसलमानों की बात आती है, एक तो ये बात रखे कि दुनिया में तो अल्लाह के यहां से दो ही कौम है, ईमान है वाले और कुफर वाले हैं, बस, और तीसरी कोई चीज नहीं है, ईमान और जो है कुफर, इस्लाम और कुफर पर। बाकी ये जो कौमें हैं लोगों ने बनाई हुई है, जो है किसी के राजा कौम है, किसी के चौधरी कौम है, ये कौमें भी इसकी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, लेकिन ये कौम है सिर्फ और सिर्फ तारफ के लिए है कि इतने इंसान हैं, इनकी पहचान के लिए रख दिया है कि ये फलानी कौम का है, फलाने इलाके का, ये तारफ के लिए। बल्कि ये कौमों का होना ये कभी इस बात के लिए नहीं है कि दूसरों से अफजल है, ये कोई किसी अफजल नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ के जो सैयद को हो जाए, शाह को हो जाए, और वो उसको उसको क्या समझा जाते हैं, सैयद शाह हो जाना कोई फजीलत की चीज नहीं है, कोई सुर है, ये सब झूठ है। ये तो कोई अगर फजीलत वाला बनेगा तो इंद अकरमकुम इंद अल्लाह अतकाकुम, अपने किरदार से, अपने मामलात से जो है उसके जितने दीन होगा उस एतबार से वो जो है वो उसको फजीलत का हकदार होगा और वो उसको जो है फजीलत हासिल होगी। लेकिन कोई कौम के रिश्वत से कह दे, और कौम का भी पता नहीं है क्या असर है या नहीं है, क्या है, कहाँ से आया, लेकर चलो को कहता है, लेकिन इस बुनियाद पर कोई ये कहे कि जी ये फलाना सैयद शाह है या फलाना चौधरी है या फलाना कोई दूसरा, इस वजह से दूसरों को घटिया समझे, इसकी इस्लाम के अंदर कतन कोई गुंजाइश नहीं है। और इस वजह से फख्र करना भी ज़माने जाहिलियत की बात है, इसके किसी को ताना भी देना है कि तुम फलानी कौम घटिया कौम से हो, किसी का ताना देना ये भी इस्लाम के अंदर जाहिलियत कहा गया इसको, कि इसकी इजाजत नहीं है ये। तो बहरहाल मुसलमानों, ये इस्लामी वो तालीमात हैं कि हमें इस पर जो है अमल करना चाहिए और कुरान से हमें अपनी रहनुमाई लेनी चाहिए, और अपने असल चीज जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ जो है, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए, आखिरत में कामयाब होने के लिए कोई कौम इलाका कोई चीज नहीं है, असल वहां जो है आपकी किरदार है, आपके अखलाक है, आपने मामलात हैं, आपके अकायद हैं। अल्लाह ताला हमें सब चीजों की इसलाह करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला दीन इस्लाम पर सही अमल करने की समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो इस वक्त दुनिया में जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उन सारे जुल्म वालों को अल्लाह ताला उनको जो हिदायत दे, उनको जुल्म करने से रोके, और मजलूम की अल्लाह मदद फरमाए। और खास कर हमारा जो मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जो घिरा हुआ है आज चारों तरफ से, और वो अपने ही लोगों के किरदार की वजह से, अपने ही लोगों की बदकिरदारी की वजह से आज इस नहज पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, जबकि दुनिया के मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम आज तक अपने उसी में डर में है कि पता नहीं پاکستان میں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا، نہ اہل حکمران نہ اہل ارباب اقتدار، اور پھر ایسے لوگ ایسے نہ اہل لوگ جو انہی کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ عمن بکمن عمیون سمن بکمن لا یرجعون، کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے کان بند کر کے اپنے جو ہے زبانیں بند کر کے جو پھر انہی لوگوں کا ساتھ دیتے، وہ لوگ اس ملک کی تباہی میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شعور عطا فرمائے کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کا علاج کس میں ہے، صرف علاج یہ کہ اس قرآنی نظام کو نافذ کر دیا جائے، قرآن کے ساتھ دشمنی کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کے ساتھ جنگ کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن کا نافذ کر دیا جائے، جس کو جو قرآن یہ بتا جائے کہ اس جو ہے چوروں کی کیا سزا ہے، بد کرداروں کیا کیا ہے، بدماشوں کیا سزا ہے، اور بے حیاؤں کی کیا سزا ہے، اس سزا نافذ کر دی جائے تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سمجھتا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا کمانا اجرہ سے فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: समय नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समय हफ्ता गुजर गया, पता ही नहीं चला, ऐसे मालूम होता है कि जैसे साल गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता कि वो महीना गुजर गया है। इसी तरह वीकेंड का कोई पता नहीं चलता, जो ही वीकेंड जाता है तो फिर आँख खुलती है तो कहते हैं जी आज वीकेंड है। तो टाइम तेज़ी से गुजर रहा है, टाइम की कदर किया करें, टाइम का ख्याल रखा करें। टाइम ही बहुत कुछ है, टाइम ही बहुत कुछ आपको देता है, पाबंदियाँ आपको बहुत कुछ देती हैं, तो इससे सबक सीखना चाहिए। समय नाजरीन, इस वक्त हमारे थिंक टैंक से ये तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम तब्दील हो गया लेकिन उसके बावजूद धूप निकली हुई है, दुनिया अब तब्दील होने की तरफ जा रही है, तब्दील हो चुकी है, मुल्की हालात तब्दील हो चुके हैं, नहीं तब्दील हुए तो ये ओवरसीज तब्दील नहीं होते, ये हर दफ़ा अपनी ही कोई तरबियत जो है वो उनकी अपनी ही कोई तरबियत है, अपनी ही कोई लाइन है, इन्हें कोई पता नहीं हमारा अगला इकदाम क्या होना चाहिए, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम हमारे थिंक टैंक की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने इंट्रो में बताया, मौसम बहुत प्यारा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, 16 से लेके 19 डिग्री तक मौसम है, धूप निकली हुई है, सुबह काफी धुंध थी और ये धुंध अब जारी और सारी रहेगी क्योंकि बाज औकात एकदम बाज इलाकों में सर्दी हो जाती है और बाज इलाकों में जो है वो थोड़ा सा वेदर जो है वो थोड़ा सा गर्म होता है, जो आपस में टकराते हैं तो फिर धुंध जो है वो फैलती है। लेकिन असल में जो मसाइल हैं डेनमार्क के, इसमें अब कुछ गले की बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं और जैसे लास्ट वीक हमने बताया था कि जो पेंशनर्स हैं और जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक किस्म की बीमारी में, यानी कि खुदा ना करे किसी को कैंसर है या किसी को हाई डायबिटीज है या कोई ऐसे, तो उनको ई बॉक्स में आ चुका है कि 1 अक्टूबर और इसके बाद आप जो है वो कोरोना वैक्सीन और फ्लू इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाएं। अब लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, कुछ कहते हैं जी के ये नुकसान देते हैं, कुछ कहते हैं जी ये फायदा देते हैं। देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो मेडिसिन देता है वो उस मेडिसिन से हमें कुछ ना कुछ तो अफाका जरूर होता है। कोई ऐसा नहीं कि अपनी कौम को जहर पिला रहा हो। मैं मिसाल देता हूँ अपने मुल्क की, आप देखें दूध से बच्चे को पिलाने वाले, दूध से लेके मेडिसिन तक हर चीज जो है नंबर 2 नंबरी बल्कि 3 नंबरी वहां की जाती है और जहरीली चीजें लोगों को खिलाई पिलाई जाती है। इन ममालिक के अंदर हर चीज के ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर कितना क्या डाला हुआ है और कितनी क्या चीज है और इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसके असरात क्या होंगे आपके ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, तो वो सारा कुछ यहाँ लिखा होता है। तो लिहाजा आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन आपके लिए सूदमंद है या आपके लिए खतरनाक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने देखा होगा कि जब कोरोना था तो उस वक्त 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो थे वो जिंदगी से हाथ पूरी दुनिया में खो बैठे थे और जो वो लोग थे जिनके डेटाबेस से, यानी कि जिनके कोई पर्सनल नंबर वगैरह बने हुए थे, लेकिन जो लोग वैसे गए और जिन लोगों ने नहीं बताया कि ताकि जनाजा ना हो सके, तो उनकी तादाद हो सकता है कि इससे आधी या इससे ज्यादा हो। बात यह करने की है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप इस जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको जब ये येलो कार्ड देते हैं तो येलो कार्ड जो है स्विस सिक्किम के बीच इस वक्त आपके हाथ में आ जाता है, उसके ऊपर सिर्फ ये ना समझे कि ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है, आपका पर्सनल नंबर लिखा है, नहीं, ये आपको फुल नगदाश्त जो आपकी बीमारी जो किसी किस्म की चीज है उसको आपको प्रोटेक्शन देता है। तो आप अपने डॉक्टर से अपना पूरा चेकअप कराएं, बल्कि मैं तो अपने लोगों को ये कहूंगा कि जब आप 50 से ऊपर होते हैं तो आपको आपको अपने हर किस्म की चेकिंग करवानी चाहिए। بعض لوگ سڈنلی یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کینسر ہو گیا تھا، ہمیں تو فلانی بیماری ہو گئی تھی، ہمیں تو پیٹ کی تکلیف ہو گئی تھی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اس سسٹم سے مدد نہیں لیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم بیمار ہیں۔ نہیں، آپ بیمار نہیں، آپ صحت مند ہیں، لیکن اگر آپ کے صحت کے اندر، آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری جو پپ رہی ہے، جو بن رہی ہے، خدا نہ کرے، تو اس کا بیفور ٹائم جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے اور اس کا علاج کرانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہاں پہ پاکستان میں آپ ہوں تو آپ کو لاکھوں روپے جمع کروانے پڑتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد آپ کا علاج ہوتا ہے، ہوئے یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہاں پہ وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ، آپ کا یورین ٹیسٹ، ہر ایک چیز لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سیٹسفائی کر کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں کے چیک اپ جو ہیں وہ نہیں صحیح ہوتے اور وہ دوسرے ممالک میں صحیح ہوتے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک ذمہ دار صحت کے کا محکمہ جو ہے، ایک ذمہ دار محکمہ ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن چیک اپ جو ہے وہ اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں آپ اس کو کسی وقت بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اور آپ کو حکومت کو اس کا ہرجانہ دینا پڑتا ہے۔ لہذا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اس وقت سردی جو ہے وہ اس کی آمد ہے، وقت بھی تبدیل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں دن چھوٹا ہو گیا ہے، رات بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور آپ جو ہے خصوصی طور پہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں کہ آپ نے کون سے کپڑے پہن کے باہر نکلنا ہے۔ گاڑی چلاتے وقت آپ یہ کوشش کریں کہ آپ گاڑی کی رفتار کے مطابق آپ اپنا جو شیشہ ہے سائڈ کا، جس سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ اوپر کر کے بیٹھے، تاکہ جو ایئر آتی ہے وہ آپ کی گاڑی سے تین گنا رفتار سے، اگر آپ 60 پہ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو 180 کی سپیڈ پہ آگے آپ کے باڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیفٹ بازو میں پین ہو رہی ہے، ہمیں درد ہو رہی ہے، ہمارے مسلز میں کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ اصل میں یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ احتیاط کریں، کیونکہ اے سی جو ہے، گاڑی کا اے سی وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھٹنوں کو خشک کر دیتا ہے، یہاں کے جو اس کے اندر سلم ہوتی ہے، سلم کہتے ہیں ریشے کو، ریشہ جو ہے وہ خشک کر دیتا ہے اور آپ کے گھٹنوں کی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے مسل جو ہیں وہ سکڑنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے الاسٹک جو ہیں وہ تکلیف زا ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے یہ بس کوئی تو بیماری لگ گئی ہے، تو یہ بیماریاں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اسے احتیاط کریں۔ جی راجہ صاحب،
1: شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا، بیماریوں کے متعلق بتایا اور یہاں کے سسٹم کے تعلق بتایا۔ شاہ صاحب دیکھیں، آپ کے پاس سہولیات ہیں، میڈیکلی سہولیات ہیں، سکولوں کی سہولیات ہیں، نہ کوئی فیس، نہ کوئی کسی قسم کا خرچہ، یونیورسٹی تک آپ کی تعلیم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داریاں پڑھنے والے بنے۔ تو شاہ صاحب یہ ساری جب سہولیات موجود ہیں، تو اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ جو ہمارے اپنا پیارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ یہاں کے اوورسیز کو رہنے والوں کو کیا دیتی ہیں؟ کیا مفت تعلیم دیتی ہیں، مفت اسپتال کی سہولیات دیتی ہیں، یونیورسٹی کی مفت سہولیات دیتی ہیں؟ ہر چیز مانگنے والی، چندے والی پہ سارا گزارا ہوتا ہے۔ ایک ہی اوورسیز کے پاس پازیٹیو چیز ہے، جو کہ یہ زر مبادلہ اپنے پیارے وطن بھیجتے ہیں، اس کے بدلے انہیں کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے کہ ہم نے بس پاکستان کی خدمت کر دی۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ملتا ہے ان کو، وہ آپ کو یہیں سب کچھ ملتا ہے، ساری سہولیات آپ کو یہیں ملتی ہے، وہاں کا سیاستدان آپ کو کچھ نہیں دیتا، یہاں کا سیاستدان آپ کو دیتا ہے۔ جی شاہ صاحب،
2: یہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے۔ جو بڑے قسم کے ہمارے پاکستان میں ہاسپٹلز، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جو محکمہ صحت کے ساتھ ریلیٹڈ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ فری ولی، یعنی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ، تو دیکھیں ان کو ایسی چیزوں سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کے دیے ہوئے 1000 کرونے یا 500 کرونے پہ وہ زندہ ہے۔ یہ جب اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہاسپٹلس کو، ایسے محکمہ صحت کے محکمہ کو बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया में, वर्ल्ड बैंक हो गया, दूसरे WHO हो गया, हेल्थ का महकमा, ये सारे उनको सपोर्ट करते हैं, सारे उनके लिए पैसा लगा देते हैं, उनको हर एक चीज, ये जब बाहर कहीं से मशीनरी खरीदते हैं तो इनको बकायदा इसमें सहूलत मिलती है और ये लेकर अपने मुल्क में जाते हैं, मुल्क में अंदर भी। लेकिन बाज लोग जो होते हैं इस पेशे को देख कर, एक तो होता है जो खुदा तरस होता है, जो कहता है कि मैं तो अल्लाह की राह में अल्लाह के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन बाज ये होते हैं कि वो अपनी शोहरत और अपने अपने नाम को बुलंद करने के लिए ऐसे काम करते हैं और फिर उसे मनफी रवैया जो है, मनफी चीजें जो है वो लोगों में पाई जाती है। डेनमार्क के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे भी अमीर आदमी जो है, बहुत अमीर आदमी जो है, वो भी कादा ऐसी तंजीमात को सपोर्ट करते हैं। बाज़ुकात आप ये देखेंगे कि अमीर आदमी कोई किसी की डेथ हुई है तो उसने अपना पूरा का पूरा विरसा जो है, जो उसको उसका जो प्रॉपर्टी है उसने सारी की सारी किसी जानवर के नाम कर दी, या उसने जानवरों के महकमे के नाम कर दी, या उसने किसी कैंसर या रिसर्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं उसने वो उनको दे दी कि ये इससे लोग बेनिफिट जो है वो बेनिफिशरी हो, और ये चीजें चलती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ के लोग, जो आपका असल सवाल है कि हमारे लोग यहाँ पे क्या ऐसी कोई तंजीमात इस मुल्क के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी, ख्वाह उनके पास डेनिश नेशनलिटी हो, ख्वाह पाकिस्तानी नेशनलिटी हो, ख्वाह इंग्लैंड की नेशनलिटी हो, ख्वाह भी, लेकिन है वो पीछे से पाकिस्तान के, क्या उनको कोई ऐसी प्रोवाइड चीजें कर रही है, क्या उनको ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको पता लगे कि हम इस मुल्क में रहकर अपने लोगों के लिए उनको बाशऊर कैसे कर सकते हैं, हम उनको मुख्तलिफ एडवेंचर्स, मुख्तलिफ चीजें सिखाएं, उनको बताएं कि इस मुल्क में सिर्फ ये कोपनहेगन ही नहीं या वेस्ट आइन ही नहीं, इस मुल्क के अंदर कितने छोटे छोटे जजीरे हैं, कितने छोटे छोटी सैर व तफरी की जगह है यहाँ पे जहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ पे किस किस्म का काम हो सकता है, हर किस्म की एजुकेशन जो है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए इस वक्त हमारे जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इंतहाई असास पोस्टों पे बैठे हुए हैं, डेनमार्क के अंदर बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए हैं, और इवन आप देखेंगे म्यूजियम से लेके हर किस्म के तारीखी मकामात पे हमारी औरतें, हमारे मर्द सब बैठे हुए हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन जब आता है कि क्या आप इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं, क्या आप लोगों की रहनमाई कर सकते हैं, क्या आपके ख्यालात से कुछ लोग रोशना हो सकते हैं, इस तरह के सेमिनार देखने में यहाँ नहीं आए, ना ही हमारे एम्बेसी की तरफ से ऐसे कोई सेमिनार हुए हैं, और ना ही हमारे जो लोकल जो फॉरेनर्स हैं, हमारी लोकल जो कल्चरल या आप ये कह सकते हैं हमारी जो जितनी भी तंजीमात है इनकी तरफ से ऐसा कोई
1: मसला ये था। सवाल ये था कि ये सहूलियात जो आप जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं ये तो किसी और के गुलाम है, किसी पीर के गुलाम है, किसी सियासी जमात के गुलाम है, तो शाह साहब ये शऊर कैसे आएगा? पहले ये गुलामी से बाहर निकलेंगे तो ये शऊर आएगा।
2: ये बिल्कुल यही चीजें जो है हमें डुबोने के लिए काफी हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम क्या हैं, पहले इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जब ये कहा कि तुम एक मिट्टी से बनाए गए हो, और उस मिट्टी के अंदर आप देखें कि मिट्टी के अंदर कितनी नबातात होती हैं, कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, तो हम जिस चीज से बनाए गए हैं हमारा वजूद कैसा है, क्या हम इस वजूद को सह पाएंगे जिस दिन हमारा इस दुनिया से आखिरी दिन होगा, हमारा आखिरी सफर होगा, उस दिन जब हम देखेंगे कि हमारे वजूद में से क्या क्या चीजें निकल रही हैं तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल लोगों की इज्जत एहतराम करनी चाहिए, हर एक को मोहब्बत से मिलना चाहिए, हर एक को देख के जाना चाहिए। हमें जो असल में आपका सवाल है उसकी तरफ लोगों को मोटिव करने के लिए, उनको लाने के लिए यहाँ सेमिनार करने बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। बाज लोग जो हैं वो आपसे अग्री करने के लिए नहीं आते, वो आपको सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो आपको किस तरीके से आपके साथ वो मुकाबला करें, आपको हराने की कोशिश करें, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो लोगों को ये बताएंगे कि इसके पास ये जो आया है इसके पास नॉलेज ही नहीं। तो हालांकि आप ये देखें कि डेनमार्क के अंदर जो यहाँ पे कॉन्सुलेट फर्में हैं, दूसरे लोग हैं, वो बकायदा पेमेंट लेके आते हैं और लोगों को जो है वो चंद घंटे या चंद दिनों के अंदर कोर्स कराते हैं। यहाँ पे अगर एक झंडे है तो उसको भी महीने में कितने कितने कोर्स करने पड़ते हैं, नई नई चीजें टेक्नोलॉजी नई नई चीजें सीखनी पड़ती है। इस तरह डॉक्टर्स हैं, दूसरे जॉब्स कर रहे हैं उनको, हाई जॉब्स कर रहे हैं उनको मोटरिक कोर्सों पे जाना पड़ता है। लेकिन हमारे जो थे शुरू में डॉक्टर्स आपके पास आपके प्रोग्राम में आते थे, डॉक्टर शबीर हो गया, दूसरे हो गए सारे, ये आगे कुछ ना कुछ मेडिकल टर्म्स हमें बताते थे, हमें खुशी होती थी सुन के कि जिन चीजों का हमें इल्म नहीं वो हम सीखते थे और अपने अपने एहतियात करते थे। लेकिन अब मसला ये हो गया कि क्या लोग हम लोगों को ये चीजें बता सकेंगे, क्या हम ये जो पैसा
1: आजकल का जो सबसे बड़ा इलम है ना कि पैसे किस तरह बनाने हैं, एसेट किस तरह बनाने हैं, बड़े बड़े घर किस तरह बनाने हैं, तो जब हम इस तरह भाग पड़ेंगे तो बाकी चीजों से हम हटते जाएंगे। शाह साहब देखे ना कि हम यहाँ यूरोप में रहते हैं, यहाँ जिस तरह हमने कहा था कि हमें मेडिकल फ्री है, मेडिकल की सहूलियात है, हर चीज किस्म की सहूलियात है, लेकिन जहाँ हम जोर लगाते हैं वहाँ हर चीज़ में देखें शाह साहब, क्या आप इतना ज़र मुबादला जो अरबों के हिसाब से जो ज़र मुबादला जाता है जो अपने प्यारे वतन जाता है, दूसरे ममालक के लोग भी भेजते हैं, ये नहीं है कि हम भेजते हैं या हमारे मुल्क के लोग भेजते हैं, दूसरे ममालक के लोग भी भेजते हैं, शाह साहब क्या हमें सहूलियात मिलती हैं वो, क्या हमारा ओवरसीज़ का मेडिकल फ्री है, क्या ओवरसीज़ के लिए वहाँ स्कूल बने हुए हैं? तो शाह साहब जब हमें बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिलती, क्या वहाँ का तालीमी निज़ाम जो है वहाँ आप जो है आपका MNA देखे, आपका MPA देखे, वो किस तरह अपनी पर्सनालिटी क्लैश पे पड़ा हुआ है, रिश्वत खोनी का बाजार गर्म है, थाना कचहरी को आप देख लें। शाह साहब एक आसान टारगेट है, आप आजकल आसान टारगेट लोगों ने बनाया हुआ है शौदा को, शौदा के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, आए दिन शाह साहब 70, 72, 20, 30 जो है वो जवान अफीसर अफवाज पाकिस्तान के जो है वो शहीद हो रहे हैं, हम उनका मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाते हैं, हम एक पार्टी के सरकार के मुलाजम होते हैं, एक सूबे के मुलाजम होते हैं, उसके बाद अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं, सोमनाथ का मंदिर बना के गिराने के लिए हम आ जाते हैं। शाह साहब ये शऊर हम कैसे पैदा करें जबकि इस मॉडर्न तीन दौर में हम अपने जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के लोग भी ये सोच रखते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ।
2: ये आपने बिल्कुल सही बात की है, ये शऊर उस वक्त आता है जब पढ़े लिखे लोग जो है या जो जो अपने आप को मैं तो उनको मौलवी हजरात कहूंगा, जो अपने आप को आलम दीन कहते हैं, आलम दीन का मतलब होता है कि दुनिया के दीन के बारे में आप बात करें, तो वो जब तक खुद सीधे रस्ते पे नहीं आएंगे, खुद आकर बात नहीं करेंगे। हम कभी कभी किसी महफिल में जाते हैं जहाँ कोई पाकिस्तान से या किसी दूसरी जगह से कोई पढ़ा लिखा बंदा आता है, कहता है जी मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने इतनी चीजें कर दी, लेकिन जब आप उससे सवाल करते हैं कि क्या आपने किसी ऐसे बंदे से मुलाकात की जो इस चीज से इस रस्ते से गुजर रहा हो, तो जवाब होता है माइनस, यानी कि जो किताबें पढ़ी जो लिखी हुई किताबें पढ़ी उनमें से अपनी मर्जी के चुनाव करके अपनी किताब लिख दी और कह दिया कि जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आजकल तो इतना इजी हो गया है, आप देखें कि अब दुनिया भर की जो जो हुकूमतें हैं वो चीखने शुरू हो गए हैं कि ये जो AI आया है ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमने पिछले साल से ही आपके रेडियो पे ये लोगों को इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी थी कि प्लीज आप बराए मेहरबानी AI को ज्यादा यूज ना करें, ये बहुत ही खतरनाक है, इसके साथ मुख्तलिफ तस्वीरें बन जाती हैं, इसके साथ मुख्तलिफ लोग गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज। यहाँ पे हमारे मुल्क में जो आपका रेलिवेंट सवाल था उसकी तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पे बजाय चंदे इकट्ठे करके तो पाकिस्तान में भेजने या किसी और मुल्क में भेजने की बजाय इनको ये चाहिए था कि ये ऐसे सेमिनार करें जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, हमारी औरतें हैं, बच्चे हैं, वो जो हैं उनसे फायदा हासिल कर सके, उनको समझ सके और ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जो उस सब्जेक्ट को समझते हो, ताकि वो लोगों के सख्त से सख्त सवालों के भी जवाब जो है वो आसानी से और मुस्कुराहट के साथ दे सके। ये नहीं करें कि जी मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ या मैं बहुत बड़ा तूफान हूँ, मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर लानत है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो शहीदों को ये कहते हैं कि देखो जी ये शहीद हुए। देखे कुरान, आप जब शहीद का मजाक उड़ाते हैं तो आप कुरान मजीद का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हमारे डेनमार्क के उल्मा के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो शोहदा के ऊपर हर जुमे के ऊपर लेक्चर दे कि शहीद जो है, किसी किस्म का भी कोई शहीद है उसका मजाक ये बिल्कुल ना उड़ाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कसम खाई है कि जो शहीद है तुम्हें शौक ही नहीं, तुम्हें तसव्वुर भी नहीं कि वो मेरे घर में जिंदा जवेद है, और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जब हम कुरान मजीद की बात को टालेंगे तो इसका मतलब है हम मुर्तद हो गए हैं। कुरान के जेर जबर को आप शक की निगाह से नहीं दे सकते। तो लिहाजा मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप जैसे भी हैं दजाल मत बने, आप मुर्तद ना बने। आप अपने आप को, अगर आपको ये नहीं पता कि शहीद कौन होता है तो उसके बारे में मौलवियों के पास जाएं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं और इसके ऊपर आराम से बैठ के पूरी बात सुने। हो सकता है कि कल को आप ही शहीद हो रहे हैं या आपके ही घर में से कोई शहीद हो रहा हो। आज आप शुदा की भी मजाक उड़ा रहे हैं, कल क्या कहेंगे जी कि हम वारिस हैं इस शहीद के। ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला के कुरान के अंदर जो जो लफाज आए हैं हम उनका गलत मतलब नहीं ले सकते, हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इस तरीके से इंसान जो है वो मुर्तद हो जाता है और काफर मुसलमान हो सकता है। काफर जो है मरने दम से पहले दुआ कर सकता है और माफी मिल सकती है, लेकिन मुर्तद को जो है कोई माफी नहीं है, वो सीधा दोजख में जाएगा और सारी जिंदगी दोजख में रहेगा। ये अल्लाह का वादा है कुरान मजीद में। लिहाजा मैं अपने भाइयों से यही बात कहूंगा कि आप मुर्तद ना हो, इस्लाम के दायरे में रहें। अगर आप शोदा के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो आप खामोश हो जाएं, अगर आप उनके लिए दुआ खैर नहीं कर सकते तो फिर भी खामोश हो जाएं, लेकिन किसी ऐसी चीज का मजाक उड़ाना जो कुरान मजीद के अल्फाज को आप नाउज बिला आप उसकी तस्वीर कर रहे हो, ये मैं लोगों से कहूंगा कि आप जिस जिसने भी अगर ऐसी कोई तहरीर लिखी है या ऐसा कोई मजाक उड़ाया तो वो जो है वो फौरन से पहले अल्लाह से रजू करे और माफी मांगे। जी राजा साहब,
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, आज के लिए इतना ही काफी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, अल्लाह हाफिज़ जी।

0: नॉमिनेट किया है, उन्होंने अपना काम जो वो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम है। दूसरे सबसे ज्यादा जो ज्यादा फायदेमंद ओवरसीज के लिए कर रहे हैं वो हमारे जो ओवरसीज के वाइस ओपीसी पंजाब के जो चेयरमैन है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो भी ओवरसीज के मसाइल हैं, किसी की जायदाद का मामला हो, किसी के बाकी किसी नाजायज कब्जे का कोई मामला हो, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज एक हफ्ता पहले भी उनसे यूके में जाके मैंने मुलाकात की है। और वो जो उनका प्लान है वो बहुत अच्छा, ओवरसीज की सहूलत के लिए उनके जो भी मुश्किलात हैं उसके हल के लिए वो 24 घंटे 24 घंटे आप बेशक रात के दिन को किसी वक्त उनका जो नंबर है, उनके मुतलका जो भी उधर लाहौर में उनका ऑफिस है, आप रब्ता करें, उनको जो भी मसला मसाइल है उनको बताएं, वो फेल फॉर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, अदालतें भी बन गई हैं ओवरसीज के लिए, स्पेशल अदालतें बनाई हैं उन्होंने, वहां पे जज बैठा दिए हैं हर जिले में, और ओवरसीज के जो भी मसाइल हैं वो मेरा ख्याल है अभी कह लें कि 1 साल भी उनको नहीं हुआ इस जिम्मेदारी से, और जब ये 4-5 साल मुकम्मल होंगे तो और इंशाल्लाह उसका नतीजा आवाम खुद देखेगी कि ये कितनी बड़ी सहूलत ओवरसीज के लिए इस हुकूमत ने उनको दी हुई है पाकिस्तान में।
1: राय साहब, आपकी बातों से पता चलता है कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें?
0: सर हम तो कहते हैं कि हम बसियत ओवरसीज अपने मुल्क का सोचें, यहाँ पे जब जिस मुल्क में भी रह रहे हैं उन के कानून का बिल्कुल इहतराम करें, और यहाँ हमने जिंदगी गुजारनी है, हमारी नस्लों ने, ये भी हमारे मुल्क है, ये नहीं कि हम यहाँ पे आर्जी आए हैं और हमने चले जाना है। यहाँ के कानून की पाबंदी करें, यहाँ के लोगों से प्यार मोहब्बत से रहें, पेश आए, उनके भी जो मसले मसाइल हैं यहाँ के, यहाँ पे भी मसले मसाइल होते हैं, जहाँ भी कोई इंसान रहता है तो वो मकामी भी जो मसले मसाइल है उनके साथ भी आप तआवुन करें, और अपने मुल्क में के लिए जहाँ जिस जिस मुल्क से हम वाबस्ता हैं, जिस शहर से वाबस्ता हैं, वो उसका भी ख्याल रखें, और उन लोगों की बेहतरी के लिए जो भी आप काम कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करने चाहिए, और अपने लोगों की खुशहाली के लिए और जर मुबादला की शक्ल में अपने मुल्क के लिए आप अपनी खिदमात पेश करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो भाई पहले की तरह अपने मुल्क के लिए जर मुबादला भेज रहे हैं उसमें दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा भी हो रहा है, और पाकिस्तान में इस जर मुबादला से खुशहाली भी आ रही है।
1: राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: बहुत शुक्रिया राय साहब, तो मैं आपको एक बार फिर इस चीज का आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें बसीत कश्मीरी हर मौके पर ये आवाज हमारी दुनिया के आवानों तक पहुँचाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप ये ऐसे इकदाम करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।
1: सामान नाज़रीन, ये थे राजा इश्तियाक साहब जो कि अपनी बात कर रहे थे। सामान नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूर नहीं है, लेकिन हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप बेहतरीन जज हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त पेश किया जा रहा है। इस वक्त जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो ज़ीशान अली हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, हुकूमती जमात के नुमाइंदे हैं और बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं अपनी पार्टी में। इनका बड़ा असर रसूख है और ये स्कूल टीचर हैं। अभी बच्चों के साथ जो है फुटबॉल का जो है वो मैच खेलने गए थे या कि मैच खिलाने गए थे। चूँकि उस्ताद हैं, ज़ाहिर है इनके शागिर्द या बच्चे जो अपने होते हैं, बच्चे भी शागिर्द ही होते हैं, तो ये मसरूफ़ रहते हैं। छुट्टी का दिन है, बड़ी मुश्किल से टाइम होता है। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको सब सुनने वालों को, और बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा लगता है आपका इंट्रोडक्शन भी सुन के।
1: मतलब जी बड़ा हमें अच्छा लगता है कि क्योंकि उस्ताद को जो है ना, उस्ताद चाहे छोटी उम्र का हो चाहे बड़ी उम्र का हो, उस्ताद उस्ताद होता है।
2: हाँ जी, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बड़ा प्यारा जी क्या कहते हैं लकब भी है, एक तो ड्यूटी भी बड़ी प्यारी सी है। ये इसी में अपना घर बार भी चल जाता है, इसी में खिदमत फर्क भी हो जाती है, इसमें मतलब सब कुछ बड़ा अच्छा सा आ जाता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है।
1: ज़ीशान, इलेक्शन हो गए, कम्यून की कमेटियां भी बन गई, तकसीम हो गए, अभी कुछ बजट जो है वो पास नहीं हुए, लेकिन बजट पर जो है वो काम सारा सबका मुकम्मल हो गया। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो अभी सामने नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे?
2: जी काम तो जोरों से चल रहे हैं। वही देखे ना जी, कम्यूनों के भी बजट चल रहे थे, हमारे इधर भी चल रहे हैं। कुछ जगह दी एंड हो गया हमारा, मेरे ख्याल से बैलर का फंसा हुआ है। हम लोग तो उस तरह से पिछड़ता हैंडलिंग में नहीं है, मगर कुछ पार्टीज के साथ जिस तरह वो कहते हैं ना, बाहर बैठ के भी तावन होता है, तो हमारा जरा फंसा हुआ है। हमारा इधर से मैं वही कहते हैं ना कि इलेक्शन के टाइम में सब लोग करते हैं स्कूल बच्चे, मगर हमारा इधर कम्यून का स्पार्क है, चलो आ गया था, उसमें सजेशन की गई जी बच्चों को, स्कूलों पर भी कैसे स्पार्क करना है। फिर ये जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले फीस है होना, फिर उससे अगर रिजल्ट आ गया फिर उधर रुक गए स्पार्क करने से, तो ये बड़ा चलता रहता है। पॉलिटिक्स में बड़ा मजे का काम है, जब इलेक्शन होते हैं तब जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, और जब फिर चल पड़ते हैं तो फिर इधर बचाना है उधर बचाना है। जो बचाने वाली सोच है ना डेनमार्क की, ये बड़ी है, इसका स्पा स्कूल है।
1: बचाने वाली सोच है तो अखराजात करते वक्त क्यों नहीं सोचते?
2: इनके अखराजात करते वक्त यही, अगर मैं भी बोलूं कि जितना मुझे ये साल दो जो उनसे पिछले लगे या अंदर होके देखा है, यही समझ नहीं आती कि अखराजात अच्छे भले करके जाते किधर है। और वो असल में ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा हो गई है इस मुल्क में, जिस तरह आप देखते हैं किसी भी शोबे में चले जाए ब्यूरोक्रेसी बड़ी है, मीटिंग्स बहुत है। हम स्कूल टीचर्स की भी ऐसे ही है, काफी दफा मीटिंग्स होती रहती हैं, मगर वो जिस तरह काम आगे बढ़ता नहीं है, स्टूडेंट मतलब आगे बढ़ नहीं रहे उस तरह से, मगर मीटिंग्स कर रहे हैं हम बैठ के, हम हेंगे पावरफुल नेटवर्क्स में। तो इस चीज को कम करना है, और शुक्र है कि अब कुछ पार्टियों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि यार इन चीज पे फोकस कम होना चाहिए। जो टीचर्स हैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजारे, जो डॉक्टर्स नर्सेज हैं वो पेशेंट्स के पास ज्यादा टाइम होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बैठ के हम वो तुकमिचिया कर रहे हैं हर चीज को लिखना जी, क्योंकि दूसरों के लिए लिखना करना। तो इधर से बचाना, असल में रिसोर्सेज को दूसरी तरह यूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बचते बचते तो आपको पता है बचाने लगो तो बचता कुछ नहीं किसी को भी, प्राइवेट हो या मुल्क का खजाना।
1: तो लगता है इसी तरह है कि जब जिस तरह ये गेम्स खेली जाती हैं कंप्यूटर पर, दुनिया भी एक गेम बन गई है, तब्दीली की तरफ जो है सियासत कम है, गेम ज्यादा है।
2: जी बिल्कुल, एक गेम ज्यादा हो गई है, दूसरा तो आप देखें गेम छोड़ें, एक तो सियासत टिकटॉक होके रह गई है ना, और बस वीडियो होके रह गई है। आजकल अगर आप देखें गेम तो गेम, मतलब ये जो इलेक्शन हुए हैं फॉल्की सिंह वेल जो हुआ, उसमें सारे डेस्क फॉल्की पसी की तरफ देखते हैं। उन्होंने जी अपने फुलीडी कॉल की और जिनको बोलते हैं वो कम करके उन्होंने ये जो कम्युनिकेशन कॉल की हुए हैं ये ज्यादा रख ली है कि वीडियोस कैसे बनानी है, लोगों का अट्रैक्ट कैसे करना, और उन्हें पॉलिटिक्स होती है नहीं, बस इधर की बात उधर, कोई पॉलिटिक्स के माहौल है नहीं। और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो जाहिर है मुसलमान और हम काले बालों वाले वैसे ही मिले हुए हैं, उस पर सारे बोलते रहते हैं। जो मसले मसाइल हैं मुआशरे के उस पर कोई बोलता नहीं, उस पर जब बोलना शुरू करते हैं जी किसी के पास कोई सलूशन नहीं है। अभी स्कूल का इतना बड़ा इशू दोबारा हो गया, सलूशन मोबाइल टेलीफोन ले लो जी। अब पहले कौन सा बच्चे मोबाइल टेलीफोनों पर बैठे रहते हैं स्कूलों में, देखे ना आज आके कसूर किसको दे दिया, जहां मतलब कोई कुछ करना ना पड़े। तो वो भी काफी टीचर्स भी इस चीज से काफी कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड थे कि मतलब यार प्रॉब्लम रिजल्ट आ भी रहे हैं मगर इन लोगों ने ना फिर भी सोल्यूशन कोई अपनी मतलब कहीं देखना।
1: स्कूलों में बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आप देखते रहते हैं चूंकि खुद आपके बच्चे अपने हैं, लेकिन सियासतदानों में अगर देखा जाए तो पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां हैं, कद काठ वाला लीडर जो है वो जिस तरह पहले वक्तों में होता था, हर पार्टी का बड़ा लीडर होता था और एक के बाद दूसरा बड़ा लीडर होता था, नंबर टू तो उससे भी
2: जी,
1: बड़ा
2: जी।
1: लगता था, लेकिन अब किसी पार्टी में इस तरह कद काठ के कितने लीडर रह चुके हैं, जो रह गए हैं वो भी अब एक्सपायर हैं।
2: जी हाँ, और ये हमारी कल भी यही गुफ्तगू चल रही थी कि अगर आप देखें पिछले 2-3 इलेक्शन देख लें, वो लोग कहते हैं मेटे कैसे बन जाती है, कैसे बन जाती है जी, ऑपोनेंट कोई है नहीं सही तरह अच्छा कोई आया पिछले 2-3 इलेक्शन में। पहले आप देखें ना पार्टियों के अंदर मतलब एक एक दो दो तीन तीन जी खड़े होते हैं जी कि अगर ये गया तो मैं तैयार हूँ। अभी फॉरमैन एक जाता है अगला कोई आगे आता ही नहीं है, बस लोग बैठे हुए हैं कि चल हम बैठे रहे। और वही थोड़ा बहुत ये अब मैं खुद इसमें इंटरव्यू हो गया हूँ, मतलब ये भी कहना कि बंदे जो उनसे हैं कौन से अंदर आते हैं कौन से नहीं, मगर आप वो पौन इस पची देख रहे हैं उनके साथ जो 2-3 बंदे हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, मतलब बंदा सोचता है कभी कभी के काफी वेले बंदे आ गए हैं इसमें भी। पता नहीं कहना ठीक होगा जब बंदा खुद भी बैठा हुआ, मुझे आता ही नहीं समझ ये खुद की तनकीद खुद ही, क्योंकि मैं अपने आप को तो उस तरह से वेला समझता नहीं, जरूरी ड्यूटी भी है बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मगर डेनिश पॉलिटिक्स में आजकल बस लोग जो सा वीडियोस टिकटॉक्स बना बना आते ना अंदर आ गए, काम करना सबको आता नहीं।
1: मतलब है हर सिस्टम को जो है वो एक गुलाम बना लिया गया है।
2: बस ऐसे ही है,
1: तो जीशान
2: ऐसे
1: चूंकि
2: ही।
1: आप सोचते रहते हैं, आप खुद भी सोशल मीडिया को देखते हैं और हमारे लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ की सियासत जब 2-3 माह रह जाते हैं तो फिर हम सियासतदानों की बातें करते हैं, कैंडिडेट्स की बातें करते हैं, और उसके बाद बाकी सारा साल 3-4 साल जो है वो पाकिस्तानी सियासत करते रहते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: इसकी वजह इंटरेस्ट होगी राजा साहब। अब मैं अपना इसमें कसूर मांगता हूँ, मुझे मैं पिछले 1-2 दिन पहले दोस्त भी लोग कह रहे चलो यार तू नजर नहीं आ रहा आजकल ना ऑनलाइन मीडिया पर, उधर रहना बड़ा जरूरी है, एक जरूरत भी बन गया है कि अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना तो नजर भी आते रहना, और उनकी बात बिल्कुल ठीक, वो भी चढ़ते रहे यार तू खुद समय नाम में हो गया 2 दिन लास्ट के साथ गुजारे, इधर मीटिंग पे होता है उधर रखा कर अपना बताया करके क्या कर रहा है ना, कि यार बस आदत नहीं है इस चीज की। मगर दूसरी तरफ ये भी देखे, अब मेरे बाकी अब कासिम भाई अंदर गया हुआ है जी, वो आजकल बैठे हुए हैं वो भी लिख रहे हैं, इरफान भाई इरफान गुलानी साहब वो भी बैठे हुए हैं वो भी लिखते रहते हैं, नदीम फरूख साहब बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कभी आप जाके देखे ना कि हमारे कितने बंदे लाइक या कमेंट या उनको कुछ करें, कुछ भी नहीं होता। जब वो जो काम कर रहे हैं तब दिखा रहे हैं तब उसमें कमेंट शमेंट भी कोई नहीं उस तरह से, मगर जब कोई लंगर पार्टी का सिस्टम होता है उधर माशाल्लाह जी जबरदस्त और कामयाबी के बड़े ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, तो जो
1: लंगर पार्टी
2: पॉलिटिकल
1: तो
2: गेम
1: हमारा
2: वाला
1: कल्चर है ना जी।
2: तो वही है ना जी। अब वो माशाल्लाह ये जो हमारे सारे काबिल दोस्त आगे पीछे बैठे हैं अपना दिखा रहे हैं कर रहे हैं, मगर कितने लोग वो पोस्ट पढ़ते हैं शेयर करते हैं वो भी देखे ना, मगर कहीं कोई अगर किसी ने कोई किसी के अलावा में पार्टी रख दी वो ऐसे शेयर हो रही होती है कि जैसे पता नहीं क्या, तो वो हम भी वही बन गए जो पोलिटिकल, जहाँ पोलिटिकल इन्वॉल्व है जहाँ मतलब काम हो रहा है उसको हम भी सही तरह नहीं देखते। फिर जब इलेक्शन आते हैं फिर आपको पता है फिर कोई इधर पार्टी रख रहा होता है फिर उधर वाह वाह हो रही होती है फिर कोई और रख रहा होता है जी के वाह वाह करवाने के लिए,
1: पिछले
2: तो
1: दिनों कोई
2: बस
1: बात कर रहा था
2: ये
1: मुझसे तो वो कह रहा था राजा साहब 10 दिन मैंने रोटी फ्री खाई है मस्जिद में।
2: जी
1: तो इसका मतलब है सियासत तो फिर मस्जिद कर रही है।
2: बस ऐसे वही मैं कह रहा हूँ कि बातें होती नहीं। मेरा तो काफी अब अपने यूथ से जब मैं मस्जिदों में बात करता हूँ तो मेरे तो आप तो रखा करें महीने में एक दफा कम से कम कंटेम्परेरी एक इशू लेके कि अब हो क्या रहा है, मतलब इस महीने मीडिया में क्या हुआ, मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ तो मीडिया में आता रहता है। और ये क्या मस्जिदों में बुला के अपने यंगस्टर्स को बताएं कि ये खबरें चल रही हैं, इनको हमने कैसे डील करें, कैसे ना करें, क्या हिकमत है, ये भी समझाना बड़ा जरूरी है। बाकी चीजें तो हम समझाते रहते हैं, हकूक समझाते रहेंगे, वुजू तहारत नमाज जो सब जरूरी काम है वो तो समझाते रहेंगे, मगर माशरे में चलना भी कैसे है वो भी हमारा और मसाजिद का फर्ज है कि इस तरह के प्रोग्राम भी रखा करें। कुछ लोग कर रहे हैं, अगर ये अच्छे से होना चाहिए वैसे हमारे यंगस्टर्स के लिए, और ये नहीं क्या है
1: लेकिन
2: मतलब
1: शुरू
2: बाहर से
1: किया है,
2: ध्यान ला,
1: बहुत लेट शुरू किया है।
2: बस वो तो फिर चलो शुरू कर लिए, ये शुक्र है राजा। ये है कि अगली दफा तक तैयारी हो जाएगी। मुझे भी अब अल्लाह का शुक्र है कोई यूथ के ऑर्गेनाइजेशन ने पूछ दिया आप आएंगे जी वो बात, मैं जरूर आऊंगा। मतलब अगलों को तो ये लगता है कि अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने आ रहा है, मगर मेरा तो बेसिकली ये है कि बस निकल आए लोग, फिर वोट अगर दाएं दें या बाएं दें मगर वोट तो देना पहले, तो फिर इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे ज्यादा बंदे। क्योंकि तो मेरी पिछले दिनों वही किसी दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा आजकल हम लोग खुश हो जाते हैं जी के ये जब हमारी दो चार बड़ी कमूने स्पेशली पॉम्पी एल्बस लॉन चौक तो जहाँ हमारी बैकग्राउंड के काफी लोग रहते हैं, मैं बोला मैं कि यार हमें एक बंदे को छह छह सात सात सौ वोट लेके अंदर आने का क्या फायदा होगा, अगर ज्यादा बंदे आए किसी तरह, अगर हम कुछ कर सके ज्यादा आ जाए। मैं कहा सिर्फ अंदर आ रहे नहीं, अब इन ऐसी खमोलों में हमारी भी एक पमेसा फर्स्ट निकलनी चाहिए कुछ सालों में, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए,
1: नहीं,
2: सिर्फ ये नहीं
1: आपने
2: कि
1: शुरू में
2: अंदर
1: बात
2: अंदर
1: की
2: आ
1: है
2: जाए।
1: ना ब्यूरोक्रेट्स की, तो हमारे कैंडिडेट्स भी जाने से पहले ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं।
2: बस फिर मुश्किल भी काफी है भाई साहब,
1: मुश्किल
2: समझ
1: काफी
2: नहीं
1: है
2: आती
1: जीशान।
2: काफी
1: मेरे
2: मुश्किल है
1: एक दोस्त
2: क्योंकि
1: हैं सियासतदान, तो मैंने उनको दावत दी, मैंने कहा यार आपसे बात करनी है, तो मुझे कहने लगे मैं जी आज जो है ना वो गजल नाइट पे मसरूफ हूँ।
2: अच्छा वो
1: करनी
2: गजल नाइट
1: सियासत
2: भी
1: है तो
2: स्कोप
1: गजल नाइट पे मसरूफ हूँ।
2: कल्चरल भी तो थोड़ा सा करना चाहिए ना एनहेंस, अगले हफ्ते इंशाल्लाह टाइम दे देंगे जो फिर उम्मीद तो यही है मतलब,
1: देखिए
2: मगर
1: जीशान,
2: वाकई
1: आप बच्चों को जाते हैं सुबह स्कूल जाते हैं, आपको टाइम पर जाना पड़ता है, टाइम पर छुट्टी करनी पड़ती है, जो मीटिंग्स होती हैं वो आपको टाइम पर करनी पड़ती है, सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पर करनी पड़ती हैं, सियासत टाइम पर नहीं करनी।
2: बस वो क्या करें, हम शऊर और शौक की भी बात होती है जी, लगता भी है कि टाइम वेस्ट है सबको, जिससे मैं पूछता हूँ कहते यार क्यों टाइम जाया कर रहा है, तो कभी कभी वाकई बंदा सोचता है यार मैं किधर टाइम जाया कर रहा हूँ, मगर वही बात आ जाती है कि इन दी एंड इधर ही फैसले होते हैं, इधर से ही निकलता है सब कुछ, रहना पड़ेगा इवन दो हमें लगता है कि यार टाइम जाया हो रहा है। तो सियासत यही बात है, वो सारे ही कहते हैं ना कि एक इलेक्शन के दूसरे इलेक्शन के बीच में होता है आपका कैंपेन सारा, और ये मैं भी यही सीख रहा हूँ, तो ये हमें करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि जहां भी जाता हूँ इन गर्मियों माशाल्लाह मेले भी हुए, अब ये है कि लोग देखते हैं पहचानना शुरू किया है, गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इस तरह किसी तरह बस ऑर्गेनाइज कर सके सही तरह, वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि आपको सच्ची बात बताऊं लोग आते हैं स्पेशली यंगस्टर आते हैं बात करते हैं खुशी बड़ी होती है, मगर फिर जब याद आता है ना हम किसी से बात करते हैं वो यार मैं इस दफा वोट नहीं डाल सका क्योंकि इस तरह के भी बड़े लोग मिले यार वो मैं भूल गया या मेरे मुझे टाइम नहीं मिला, फिर बंदा कभी कभी सब ये भी सोचता है कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं किसके लिए खड़े हो रहे
1: यार टाइम नहीं मिली, अगर आप
2: हैं
1: देखें
2: बस
1: किसी
2: वैसे।
1: प्रोग्राम में जाए ना, किसी मस्जिद में प्रोग्राम होता है ईद मिलाद नबी के हवाले से, या जो है अपना जो है और किसी किस्म के प्रोग्राम होते हैं, तो खाना खाते वक्त तकरीबन घंटा लग जाता है, तो वो खाना नहीं
2: जी
1: छोड़ते,
2: जी
1: वहाँ घंटा टाइम होता है, वैसे उनका बड़ा बिजी टाइम है।
2: ये भाई वो
1: क्या
2: इसकी
1: ये भी
2: मुझे
1: इंसानियत
2: असल
1: की बात है?
2: इंसान की नीड की बात होगी, इंसान की खाना तो फिर नीड में आ जाता ना, अगलों को वोट देना नीड नहीं नजर आता तो क्या करे
1: آپ کے ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ حکومتی جماعت کے اس بھی سلسلہ کے ممبر ہیں اپنی جماعت کے, بہت کچھ آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, لیڈران سے ملنے کا موقع ملتا ہے. یہ کیٹاگری فائیو کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, ہم نے آہستہ آہستہ ابھی کمپین شروع کیا ہے کہ اس کے سگنیچر لیے جائیں اور سب پارٹیوں کو دیا جائے کہ لوگ اپنی پارٹی کے لیڈران کو دیں یہ سگنیچر, اس کے بعد حکومت وقت کو جو پاکستان کی حکومت ہے ان کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی یہ کاپیاں دی جائیں, آپ کیا کہیں گے؟
2: ہاں جی, یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا مجھے کہ مطلب ایک فورس ہو کے انسٹ انسامنگ واقعی اس طرح کی جائے, اور جس طرح آپ نے جب یہ مجھے بتایا تھا کہ اس طرح کر رہے ہیں, میں کہ بڑا زبردست ہے ہماری تو ایک دو آرگنائزیشن بھی بڑی اچھی ہے, وہ کشمیر فنڈ کی جتنے ڈاکٹرز ہیں سارے اکٹھے, کتنے کتنے پڑھے پڑھے لکھے بندے, کتنے کتنے ہائی پوسٹ پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ایسے ایسے بندے ذرا سامنے آئے اس سے جس طرح وہ پٹیشن کو سپورٹ کریں, تو پھر یہ ہے کہ اسے ہم آگے لے کے چلیں کہ یار فیملی ویزا تو کسی طرح کھولو نا یار,
1: اس میں تو کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے.
2: نہیں جی, سب کے لیے کھل جائیں گے, جس کا کوئی آ گیا قریبی پیارا مطلب تو بسم اللہ. تو یہ ہے کہ اب ماشاء اللہ اتنی پارٹیز میں اتنے اتنے لوگ واقعی سارے بیٹھے ہیں کہ ان کو اس آف ہوا تھا کہ اس طرح تک تو ہاتھ پڑتا ہی ہے, بتائیں یار اتنے لوگ ہیں یہ درخواست لے کے آئے ہیں, مطلب اس کو بھی دیکھا جائے تھوڑا سا بڑھے گا. یہ ہے کہ مشکل کام کافی ہے اس وقت لینے پالیسی پہ, وہ ہماری جو بہت پچھلی وجہ سے منام وجے لاسٹ سے بھی ہوتی رہتی ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ وہ مطلب سوشل ڈیموکریٹ نے اس کو بہت ٹائٹ رکھا ہوا کام, ان سو ساتھ ویل دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں ان کے سب سے زیادہ ممبر ہیں, ان کے بعد پھر وہ ساری پارٹیاں آ جاتی ہیں جو ویسے ہی ہمارے خلاف ہیں, ان سو ساتھ ویل میں بھی دیکھو سارے وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جی جنہوں نے ہماری سائڈ بالکل لینی ہے, چار بندے یا پانچ اپنے بیٹھے ہو گئے. تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے, یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے اس طرح کا یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے, اب اس کو زیر انجام کس نے دینا ہے, اسٹارٹ کس طرح کرنا ہے, پھر آگے سے آ جائے گا اس کا کریڈٹ کس نے لینا ہے, اصل میں ہم ادھر آگے کرتے ہیں نا, کریڈٹ کس کو چاہیے.
1: دیکھیں نا, ریڈیکل وینسٹرا ووٹ لے کر فارنوں کے اپنی سیٹیں تو پکی کر لی, لیکن جب موقع آتا ہے فارنوں کے لیے وہ قانون سازی میں حصہ نہیں لیتے.
2: نہیں, وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, بڑا مشکل کام ہے, اور اس وقت اس بار تو ان کو بھی میں اتنا قصور اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو ہماری بیٹھی ہوئی ہے اسٹیٹ منسٹر وہ بالکل سننا ہی نہیں چاہتی اس معاملے میں, وہ تو ہمیں کافی سورسوں سے پتا چلا ہے کہ اس معاملے میں تو آپ چھوڑ ہی دینا. اب آپ دیکھیں
1: اتنی پاورفل ہے.
2: جی جی, وہی بولا نا, کوئی اور ہے ہی اس کے مقابلے. اب آپ دیکھ لیں وہ باقی سارے بندے انہوں نے سائڈ پہ کیے, اس دفعہ اگر آپ تھوڑا سا پولیٹیکل انالیسس کریں نا, کہ اس دفعہ نہ انہوں نے اپنے وہ جو ان کے سولجر ہوتے ہیں ویلنگ کے خلاف بولنے کے لیے ان میں سے کسی کو انٹیگریشن میں اس لیے بنایا, جو ان کا ویسے سب سے اچھا بندہ مونٹوز کو, اس کو اب ہماری کمیونٹی میں کافی لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ کافی ایکٹیو کافی آتا جاتا رہتا ہے, میری اس کے ساتھ ہوئی ہے, میری جو پہلی ڈبیٹ تھی اس میں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور بڑی حوصلہ افزائی کی اس نے میری, اس نے تب مجھے یاد ہے کہتا ہے مونک ہے کو فون کر کے بولا تھا کہ یار آپ کا جو کینڈیڈیٹ آیا تھا اس نے کافی اچھا کیا تھا. تو موم کو ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اس طرح میں تو بہت زیادہ جانتا ہوں, بڑا اچھا بندہ ہے, اسے کم از کم انٹیگریشن منسٹر انہوں نے اچھا بنا دیے, مگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ, وہ سارے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوٹ کرتا ہی نہیں ہے اس کو, جو ویڈیو بےچارا بنا رہا ہے ایسے لگتا ہے جس طرح تکیہ نال بنا رہا ہے, مگر بس وہ ان کی پارٹی لائن ہے اس کو فالو کر رہا ہے, انہوں نے اپنا صاف ستھرا بندہ تھا وہ ادھر ڈال دیا ہے اور اس سے بس وہی کام لے رہے ہیں جو ان کو چاہیے. تو اتنی پاور فل ٹاپ ہے جی.
1: تو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے, ہمارے عرفان گیلانی صاحب ہیں ہم کے, ہمارے اکلوتے ممبر ہیں, کافی ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کو؟
2: وہ تو جی میں کہتا ہوں آفرین ہے ماشاء اللہ, وہ دونوں سیٹیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں, مطلب میٹنگز ہیں, پھر ادھر کا بجٹ ہے, انہوں نے پہلا وہ ہسٹوریکل بجٹ میں بھی ساتھ ہیں, جو ریجن ویسٹرن کا پہلا بجٹ تھا نئی ریجن جو بنی ہے ماشاء اللہ, اور میں ان کی پوسٹ تو دیکھتا رہتا ہوں, ان کو فالو کرتا رہتا ہوں, ماشاء اللہ کافی اچھا انلائٹن کر رہے ہیں سب کو کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں, مگر وہی کہہ رہا ہوں نا ان کی کتنی لمبی پوسٹ کون کون پڑھتا ہے یہ ذرا سوچنے والی بات ہوگی, کیونکہ وہ دکھا بتا تو رہے ہیں ہمیں مگر انٹریکشن بڑی کم ہوتی ہے ان کی پوسٹ پہ.
1: کیا آپ خالی فوٹوؤں میں دیکھ رہے ہیں یا کہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں؟
2: جی فوٹو میں نظر آئے گا تو پریکٹیکلی بھی ہوگا, تو ظاہر جاتے ہیں کرتے ہیں, लग तो काफी बिजी रहे मतलब माशाल्लाह, और वो काम भी जिस तरह आप देखें कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पार्टी टॉप में भी उनका काफी अच्छा है, उनके साथ करते रहते हैं, तो वो अच्छे है, अच्छा पोस्ट है माशाल्लाह से, अच्छा है कि राणी खेल में जरा ऐसे भी बंदा अपना और आया कि जो जिस तरह काम भी कर रहे हैं दिखा भी रहे।
1: तो अगले इलेक्शन में डेफिनेट वो उम्मीदवार होंगे, आप भी उम्मीदवार हैं, कासम भी उम्मीदवार होंगे, राशिद भी उम्मीदवार होंगे, अगली दफा सिकंदर भी उम्मीदवार होंगे, तो अगली दफा टफ मुकाबला नजर नहीं आ रहा?
2: होना चाहिए टफ मुकाबला, कि कम से कम मुकाबला होगा कभी, तो फिर वही होगा ना कि अच्छा कैंडिडेट उठ के आएगा। अब जैसा इरफान भाई भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कैंडिडेट बनना है, करना काम दिखाया होगा तो वोट भी मिलेंगे। तो ये जिस दिन हो गया हम सबके साथ के जी काम करके अपना आप दिखा के कंपटीशन अच्छा फेयर करके एक दूसरे के साथ आया गया, यही तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को भी लगे कि यार अच्छे अच्छे बंदे हैं, इनको इनके काम पे देखो, मतलब देखो इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस दफा उनके पास तो इरफान भाई के पास तो बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि वो तो कुमनेल में भी है, रीजन में भी है, मुझ जैसे के लिए मुश्किल होगा, मैं असल में जहां बैठा हूँ वो काम नजर नहीं आता उस तरह से, वो सारा कॉन्फिडेंशियल काम होता है, वो मीटिंग से जब हम निकले भी ऐसे से तो बता नहीं सकते जी क्या बात है ये।
1: हाँ ये बात बस ये बता सकते सही है,
2: ये बता सकते हैं कि बात हुई क्या, मगर ये नहीं बता सकते क्या बात हुई। तो इस तरह के भी काम होते हैं, तो ये है कि डेफिनेटली जब मौका मिले जिस तरह वो कर रहे हैं, अब कासिम भाई हमारे हेल्थनेस में सुप्रिंट बन के गए हैं जबरदस्त, मुझे अगर मौका मिला अब तो कम अज कम देख ले, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ये हो गया कि हमारी जो इधर अमाइन की सीट थी वो मोनिका गोपीन की थी, मोनिका गोपीन मिनिस्टर बन गई हैं, तो वो ऑल ओ ले लिया उन्होंने जो कि वो ले सकती थी, तो जो दो नंबर पे इश्कन थे हमारे मुर्गार ने कि वो अब फर्स्ट सुप्रीम के तौर पे अंदर है, अल्लाह उनको सेहत दे और मतलब अच्छा रखे, मगर अगर अब कुछ हो जाता है उनको, अगर छुट्टियों पर जाना पड़ता है कुछ हो जाए तो अगला फोन आ जाना निशान अली को। तो ये भी है कि अगर मौका मिल गया तो काम करके देखेंगे, दिखाएंगे, सीखेंगे हम भी उस वाले से अगर आ गए तो, वरना कोशिश अपनी है बाहर से बैठ के जितना कर सकते हैं, फिर जो जज्बा जुनून है वही लोग देखें।
1: जिस दिन काम जो काम दौड़ते हैं दौड़ते दौड़ते आखिर मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रहता, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र कि उनका, मैं आप सबको पता है सारे बोलते थे लेट आया, लेट आके अल्लाह की जात ने जहां तक पहुंचा दी, जो उनसे मौके दे दिए, मतलब ये उसका जितना शुक्र करूं कम। उसके बाद जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि अभी बच्चे और यंगस्टर जिस तरह अब तो मैं बहुत तो यंगस्टर रहा नहीं, मगर उनके बीच में रहता हूँ, मेरा काम उनके बीच में रहना है, मैं हमेशा उधर ही होता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके साथ अटैच दूसरी तरह कर जाता हूँ। ये नहीं कि फील्ड सिर्फ यंगस्टर्स की है, मतलब जब हमारे दूसरे भाई हैं उनकी भी अपनी अपनी फील्ड है, अपनी अपनी सलाहियतें हैं, मगर मुझे असल में जो शौक है मुझे अपने यंगस्टर्स के लिए होता है, और ये है कि अल्लाह उधर अटैचमेंट हो जाती है, वो निकल आए, वो एक्टिव हो जाए। मैं तो बोलता हूँ अगर किसी यंगस्टर को अगर शौक भी है तो आके मिले, उनको भी स्टार्ट करवाएं, उनको हम अच्छी से शुरू करें, अपना कॉन्टेक्ट बनाएं। ये जिस तरह आप मेरे फॉर की बात कर रहे हैं, क्यों इतनी स्ट्रांग है अपनी पार्टी में, क्योंकि ये मतलब बचपन से यंग से टेसु है, इसके साथ के जितने मिनिस्टर हैं, जितने इसके पार्टी मेंबर हैं, इसके साथ मतलब ये कितने सालों साथ साथ चलते आ रहे हैं, बड़े सालों के कॉन्टेक्ट हैं। तो इस तरह हमारे यंगस्टर भी शुरू से हमें तैयार करने चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए कि वो स्ट्रांग बन के आए, जो हमारे कॉन्टेक्ट हैं हम उनके जरिए उनको मतलब स्ट्रांग करें, पार्टी में आगे लाएं।
1: तो कितने यंगस्टर हैं अगर आपकी आप, मैं तो किसी यंगस्टर को नहीं जानता, एक दो को जानता हूं कि जो अभी यंग उम्र में जो मेंबर बने हैं पार्टियों के, वैसे तो बेचारों को दिलचस्पी नहीं है, जब कम्यून का इलेक्शन लड़ना होता है तो कुछ अरसा मेंबर बन जाते हैं।
2: दिलचस्पी जी वाकई नहीं है, और वो दिलचस्पी मैं अपने बच्चों को बोलूँ, गोरे बच्चों को भी आजकल दिलचस्पी नहीं है, कॉन्फ्रेंस में पढ़ाते मुझे अब 12-13 साल हो गए, जितनी जितनी कम कम दिलचस्पी होती जा रही है बच्चों को आजकल, बंदा क्या करे, मगर वो भी पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है कि अब समझ भी नहीं आती लोगों को, पहले कम से कम समझ आती थी ये ब्लॉक है वो ब्लॉक है, ये चाहते हैं ये चाहते हैं, अब कौन क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। یاسرے ہوتے ہیں.
1: چلیں آپ ذیشان آخر میں کیا کہیں گے, چونکہ آپ اسکول ٹیچر ہیں تو بچوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی تعلیم کو, والدین کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے بچوں پر کس طرح کی نظر رکھیں؟
2: جی نظر تو آج کل یہ بڑا رہ گیا جی کہ یاری دوستی پہ نظر رکھنی بڑا ضروری ہے, ساتھ پہ رکھنا, کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اگست کا مہینہ لے لیں, ہماری آج کل اب ایجوکیشنل پلیسز بھی جہاں بندہ جا رہا ہوتا ہے, گمنیشیا میں جا رہا ہوتا ہے, وہ غوث قلعہ میں 16 سال کے لڑکے نے 16 سال کے لڑکے کو مار دیا. ادھر پچھلے دنوں ہیلیو گمنیشیم ہمارے ادھر قریب ہے, ادھر میرے اتنے پرانے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, ادھر پچھلے دنوں ایک نے جی کو چھری مار دی. وہ بعد میں مجھے پتا چلا جی میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا پرانا, کہتے یار میرا کلاس میں فیلو تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نظر رکھیں, دوست یاری پہ رکھیں, کیونکہ آج کل یہ اچھے بچے بھی آپ کو جگہ جگہ ملے گا مگر برے بھی انفارچونیٹلی آتے جا رہے. تو نظر رکھیں, بات کریں ان سے, کیونکہ بچے کافی کچھ آبزرو کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ایک کپڑے کی طرح, وہ مطلب کترا کترا کر کے اپنے اندر لیتے جاتے ہیں, انہیں نچوڑنا چاہیے کبھی, ان کے ساتھ بات کریں. اور یہ جو سارے ہو باتیں ہوتی ہیں, ویڈیوز آتی ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو موت میں سس میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھتا, یا آئی سی ایم کی یا مسلمانوں کے خلاف کی. تو بڑا ضروری ہے کہ ان سے بات کریں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور یہ مساجد کو بھی جو ہمارے یہاں آرگنائزیشن ہے, بچوں سے بات کیا کریں کیا چل رہا ہے, کیونکہ ان کے دماغ میں اور ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ کافی کچھ دکھا دیتا ہے. تو اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے گفتگو ان کے ساتھ بڑی لازم, ورنہ وہ سب ان کے اندر ہی رہ جائے گا. اور تو مور دین ایور ان سے بات کرنے کی, سمجھنے کی اور سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. اور میرے لائف کسی کے لیے کوئی خدمت ہوئی تو آپ بیچک بتائیے گا, کسی کو بچے کی مدد کے لیے ضرورت ہے کسی بھی کام کے لیے, بچوں کے لیے آلویز آلویز دیئر. اس دفعہ بھی دو کلاسوں کا کلاس لیا بنا ہوا ہوں, جو شوق ہی یہی ہے, اسی میں مزہ آتا.
1: چلیں آپ کو شوق بھی ہے تو کوئی کام کرنا چاہیے جس میں زیادہ بندے کا شوق ہونا چاہیے, وہ کام کرنا چاہیے جس میں بندہ جا کر کوئی تبدیلی لا سکے.
2: جی تو تبدیلی وہی ہے جی, ایک بچے کی بھی تھوڑی سی زندگی چینج کر لی, کسی اچھے رستے پہ چل پڑے تو اس سے بہتر ہو, اس سے زیادہ خوشی ہو کوئی. تو اللہ کا شکر ہے جی کہ 14 سال ہو گئے, کوئی آج تک بچہ ایسا نہیں آیا کہ وہ جو بولے یار یا کیک لی تھا. الحمدللہ وہی ہے, عبادت سمجھ کے کام کو کر رہے ہیں ساتھ, رزق حلال آ رہا ہے, اللہ کا اتنا شکر ہے کہ جتنا کرے کم ہے,
1: رزق حلال آ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, یہی سب سے بڑی بات ہے آج کی.
2: جی بالکل کوئی شک نہیں, یہی بات.
1: ذیشان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا.
2: جی بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو انشاءاللہ اور اب گرمی کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور ایکٹیو ہو جاؤں گا, تو جس کسی کو بھی کبھی کچھ ہوا انشاءاللہ, اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہونے کی پوری کوشش ہے, ورنہ کسی کو بھی کوئی کام ہو بنا جھجک رابطہ کریں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے تو پورا کرنے کی انشاءاللہ.
1: بہت شکریہ ذیشان. سامعین ناظرین یہ تھے ذیشان علی جو کہ اپنی پارٹی کے حزب ثلثا کے ممبر ہیں, ان کی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں, کمیٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی پاورفل پوزیشن میں ہیں. اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اب مجھے ووٹ دیں, وہ کہتے ہیں سیاست میں حصہ لیں, بچوں پر نظر رکھیں. وہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے اور رزق حلال کی طرف جو ہے, میں الحمد نے کہا کہ الحمد للہ رزق حلال آ رہا ہے اور کافی اچھی مقدار میں مل رہا ہے, تو رزق حلال کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو رزق حلال ملے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: अंकल अभी क्योंकि इस बार हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला, और हमने काफ़ी ज़्यादा क्या मैं रिक्वेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स दिए हैं क्या हम जो हम चाहते हैं कि बजट में का एक मेन हिस्सा हो. अनफॉर्चुनेटली वो क्राइटेरियाज मीट नहीं हो पाए, तो इसलिए क्या मैं सिकंदर भाई ने भी क्या मैं अपना स्टेटमेंट दिया था बजट का, एंड वो एक्चुअली वो जो बजट के जो फाइनलिंग है वहाँ से वो निकल गए थे. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बड़ा चेंज आएगा इस बार, लेकिन ये क्या मैं सिटी काउंसिल पीरियड का अभी शुरुआत है, पहला क्या हम पुशेट फॉरहैंडलिंग है, तो मुझे लगता है कि ये भी आराम आराम से करना चाह रहे हैं, एंड जब इलेक्शन के करीब होंगे तो फिर आप वहाँ आप भरे चेंजेस उस वक्त देखेंगे.
1: जिस तरह सिकंदर कह रहे थे, आपके पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे थे आप अगला इलेक्शन जो है कोपनहेगन कम्यून से लड़ेंगे और वो खुद पार्लियामेंट का लड़ने जा रहे हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है?
0: अंकल एम्बिशन तो हमारा हमेशा कि हम पार्लियामेंट का रहा है, एंड अभी हमने क्योंकि लास्ट इलेक्शन हमारा कम्यून का कुपमेक में हुआ है, तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से क्या हम एक नेटवर्क बना लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से हम जो यहाँ के लोगों के इश्यूज है वो हम समझ रहे हैं. तो मुझे लगता है ये यही है कि हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई है कि हम पार्लियामेंट लेवल में भी अपन हम कम्यूनिटी की आवाज़ को हम बुलंद करें. तो अभी बहरहाल क्योंकि ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टाइम रहा है जो ट्रांजिशन रहा है मेरा सेकंड भाई का, तो हमने अभी इस पे थोड़ा बहुत फोकस करना है, तो इंशाल्लाह जब ये स्टेबल हो जाएगा तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन के भी तैयारी शुरू कर लेंगे.
1: पार्लियामेंट के इलेक्शन, कम्यून्स के इलेक्शन तो टाइम पर होते हैं, पार्लियामेंट का तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए साइन भी ज़रूरी होते हैं। क्या इसके अलावा भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है?
0: तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट वे तो यही है कि आप क्या मैं एज अ पार्टी आप सिग्नेचर्स इकट्ठे कर लें. हमने क्या मैं लास्ट इलेक्शन में भी देखा है कि जो हमारे भाई राशिद अली हैं उन्होंने भी क्या मैं इलेक्शन लड़ा था, मतलब वो पार्टी के बगैर. तो ये तरीके का पॉसिबल है, लेकिन ये है कि जब आप फिर इस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल होता है कि हम एक सीट जीतना. आपको मुझे लगता है 20,000 वोट्स से ज़्यादा आपको चाहिए ये सीट हासिल करने के लिए.
1: तो राशिद अली क्या वापस आ रहे हैं या कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ली है?
0: जी उनका मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर मुझे ये पता है कि वो एक्टिव है अभी भी क्या हम पॉलिटिक्स में.
1: तो अशम आपसे बात करेंगे, अभी आपने जो तैयारियां की हैं, ज़ाहिर है अभी आपके पास काफ़ी टाइम है सीखने के लिए भी, और आपको वैसे भी काफ़ी काम आपने पहले भी सीखा हुआ है, पार्लियामेंट में थे तो आप देखते रहते थे आपको, आप अपना काम करते हैं, ऑफिस वर्क आपका A1 होता था। लेकिन अब बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अगर देखा जाए गैर मुल्कियों में, गैर मुल्कियों की जो आवाज़ उठाती है वो सिर्फ आप ही की
0: जी
1: पार्टी है, बाकी तो इलेक्शन जीतने के लिए सोशल डेमोक्रेट भी बात करती है, रेडिकल वेंस्टा भी बात करती है, SF भी बात करती है और जमातें
0: जी
1: भी बात करती हैं, तो खुल के जो मुखालफत करती है वो तो डेनिश पीपल्स पार्टी करती है, आप क्या कहेंगे?
0: जी अंकल बहुत शुक्रिया आपने ये क्या हम सवाल उठाया, क्योंकि बेसिकली मेरा यही कंसर्न रहा है एज ऑफ रिसेंट. क्योंकि अगर आप कल परसों देखें एक कहानी निकली है काफ़ी क्या हम अखबारों में, जहां वो कह रहे कि फकीर कुरान का नया बंदा अशम आगे नदीम ने ये कहा है कि क्या मैं अरेंज मैरिज एंड फोर्स मैरिज दो डिफरेंट चीज़ें हैं. बेसिकली मैं ये कह रहा था कि डेनमार्क में हमारे जो माइनॉरिटीज खासकर मुस्लिम जो कल्चर के लोग हैं इनकी ये प्रैक्टिस है कि वो अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं, एंड बच्चों को भी अक्सर कि हम इस चीज़ में ज़्यादा आसानियाँ वो देखते हैं. तो मैंने बस ये कहा कि कोई रेसिस्ट पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये दो चीज़ें एक हैं इसको ख़त्म कराने के लिए कि फिर डेनमार्क में अरेंज मैरिज का मौका ना हो, और मैंने बस यही क्या हम आगे कहा है कि ये क्या हम अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई क्या गलत काम नहीं होता कि आप प्लीज़ इन लोगों को अलाउ करो ये करने के लिए. लेकिन इस पे मुझे बहुत शदीद क्या मैं क्रिटिक्स हुए हैं, ना सिर्फ क्या मैं रेसिस्ट पार्टियों से जो राइट विंग पार्टीज है, लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज है ये भी कह रहे कि इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए. गारिकेल वेंसन ने कहा है, इनस लिस्ट ने भी क्या हम इस चीज़ पे काफ़ी क्रिटिकली उन्हें देखा है. अब मेरी सिर्फ ये क्या हम कंसर्न है कि जो पार्टीज हम नॉर्मली हम इनको वोट देते हैं अगर वो ऐसे एक कॉन्सेप्ट जैसे अरेंज मैरिज को ख़त्म कराना चाह रहे हैं तो फिर क्या

0: में हमारे लिए क्या रह गया अंकल, आप मुझे बताएं।
1: इन स्टेशन की आप बात करते हैं तो एक दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया उस वक्त की जो फोरमैन थी, बाद में वो सोशल डेमोक्रेट में चली गई, तो अब लॉर्ड मेयर भी रहीं, तो अब गालिबन उन्होंने सियासत छोड़ भी दी है। तो वो तो एक ज़माने में कहती थी जब ये सवाल किया गया अरेंज मैरिज के मुतल्लिक, तो वो कहती या हा लीग लैज, मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ 10 शादियाँ करे, 5 करे, 3 करे, 2 करे, अपनी मर्जी से करे, मैं बिल्कुल बलैना नहीं करूँगी।
0: अंकल होना भी ऐसे चाहिए ना कि हम आप कि हम ओपन रहे दूसरे लोगों के कि हम प्रेफरेंस के लिए, एस लॉन्ग एस आप कोई किसी के साथ ज्यादती ना करें, कोई क्रिमिनलिटी ना करें, तो हमें फिर क्या हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं हम अरेंज मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या हम बैन करना चाह रहे हैं, कल वो किसी के हिजाब के बारे में बात करेंगे, या तो वो फिर कहेंगे कि आप
1: नहीं,
0: मस्जिद
1: आजकल
0: को
1: कोई
0: भी
1: अरेंज
0: हमने बंद
1: मैरिज
0: कराना
1: हो रही है,
0: पड़ेगा
1: अब तो कभी भी किस तरह की डिबेट हमने नहीं सुनी।
0: जी।
1: आजकल कोई अरेंज मैरिज हो रही है, हमें तो अभी आज दिन तक हमारे पास तो कोई इतला नहीं है।
0: नहीं ये पिछले 2-3 दिनों से मैं अंकल आपको आर्टिकल्स भी सेंड कर लूंगा, काफी ज्यादा क्या मैं खबर आई है इस चीज के बारे में
1: तो इस पे
0: मेरे साथ
1: रेडिकल
0: एसोसिएट
1: वेंस्टा क्या कहती हैं, सोशल डेमोक्रेट क्या कहती है, ये दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं?
0: जी। आप यकीन करें कि एक जो विंस्टा का जो मेयर है आमसोस पर मेस्टा ल्यूटकन, उसने कहा कि मैंने कभी इतना क्या मैं क्रेजी बात नहीं सुनी, मतलब उन्होंने अपना ये इशार किया कि ये हमारे सोच में भी नहीं हो सकता कि हम इस चीज को अलाउ करें। तो अब मसला ये हो गया कि ये एक कहानी बन गई है, और अब हम हमें अगले मीटिंग में देखना पड़ेगा कि वो इस पे एक्चुअली कोई काम करना चाहेंगे इसको खत्म करने के लिए, या वो एवं क्या मैं मीडिया के लिए ये बात कर रहे हैं। और गैरी केल्विन ने भी कहा कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, एंड इनोसलिस ने भी कहा है।
1: अशम क्या बात है, रेडिकल वेंस्टा तो गैर मुल्कियों के हक में बड़ा बोलती है, जब वक्त आता है तो उसके बाद वो अपनी सीट लेकर फिर वो भूल जाते हैं, मुआहदे कर लेते हैं, पार्टियों के साथ मिल जाते हैं।
0: अंकल अगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन यही है कि कई ऐसे पार्टीज है जो हमारे वोट्स के लिए काफ़ी कुछ कह जाते हैं, लेकिन इसेंशली कि हम पार्टी के जो स्ट्रक्चर में वो ये अलाउ नहीं करते कि वो हमारे लिए काम करें। अभी जैसे ये अरेंज मैरिज वाली बात हुई है, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि पार्लियामेंट में रिसेंटली इन्होंने ये क्या बिल क्या हम एक्सेप्ट कर लिया है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं नॉर्मली वो अपने बीवियों को भी या फैमिली मेंबर्स को भी साथ के आ सकते हैं, मतलब अपने स्पाउसेस को साथ के आ सकते हैं, अब उस चीज़ को भी वो ख़त्म कर रहे हैं। और पहले ये था कि क्या मैं जब आप ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपको फिर 3 साल मिलते हैं वर्क वीज़ा, अब वो 3 साल वर्क वीज़ा वो 1 साल का करवाना चाह रहे हैं। अब बंदा ये सोचे कि क्या मैं इन्होंने पहले से ये स्ट्रक्चर बनाया है कि लोग यहाँ आए अपना मास्टर या पीएचडी करें कंप्लीट करके फिर वो एक अच्छा सा काम करें, अच्छे पैसे कमाएं, और फिर उन पैसों में से तो काफी पैसे क्या मैं गवर्नमेंट को मिलेगा ना टैक्स के थ्रू। तो पहले से एक सिस्टम बना है जहां सिर्फ जो वेल एजुकेटेड एंड वेल एस्टेब्लिश लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अब उनको भी वो हटा रहे हैं क्योंकि कोशिश ये है कि जितने कम क्या मैं खासकर जो एशियन मुल्कों के लोग आ रहे हैं उनको हम जितना रिस्ट्रिक्ट करें वो बेहतर है। और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने एक स्पेशल डील बनाया इंडिया के साथ कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ इंडियंस आए। तो ये आप अंकल आप खुद देखें कि हम ऐसे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ अनफॉर्चुनेटली मुसलमान
1: कहीं हम
0: होना
1: लोगों
0: आपके
1: की
0: लिए
1: अपनी
0: आसान नहीं
1: गलती तो
0: है
1: नहीं है,
0: जी।
1: कहीं हम लोगों की अपनी गलती तो नहीं है।
0: हमारी गलती है अंकल, हमारी गलती इस रीजन की वजह से है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से क्या हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। अगर अभी मैं क्या मैं सिटी काउंसिल से पहले मैं क्या नोएडा काउंसिल में बैठा हूँ, वहाँ एक अंकल असलम म्यूला पागन है वो शामिल है क्या उस वेल में, लेकिन उनके अलावा ऐसे कोई प्रॉपर किस्म के क्या मैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब हमने फैसले लेने होते हैं कि क्या हम इस रोड को अगर हमने खोलना है या इस रोड को हमने बंद करना है या पार्किंग का हम देख लें, अगर वहाँ हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे काम करेंगे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं अगर हम उनको सपोर्ट ना करें फिर तो आप दुआ ही कर सकते हैं।
1: लेकिन अशम, अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो लोग 12 12 13 13 साल से यहाँ रहते हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको वीजा नहीं दिया जाता।
0: ये क्योंकि अंकल हमारे एक इमेज बन गई है ना, अभी भी पाकिस्तान कैटेगरी 5 में है, एक जमाने में हम कैटेगरी 3 में थे, तो ये हम ये एक इश्यू ऑनगोइंग है। इवन दो कि क्या मैं जितने सक्सेसफुल पाकिस्तानी डेनिश लोग हैं उतना क्या हम हो सके दूसरे और क्या माइनॉरिटी ग्रुप के नहीं होंगे, हमारे बहुत बहुत अंकल वेल स्टेब्लिश्ड डेनिश सिटीजन्स है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का जो जज है पाकिस्तानी है, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो हाईली क्या मैं इन्वेस्टर क्या मैं बिजनेस ओनर्स है जो क्या पाकिस्तानी है, तो हमारा डेनिश कम्युनिटी में हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, पॉलिटिकली हमने उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया जहां हमें करना चाहिए।
1: तो अशम, आप क्या समझते हैं कि कुछ में कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं, या आप दूसरी तरफ जमातों की तरफ कहते हैं फलां जमात हमारे खिलाफ बात कर रही है, फलां जमात कर रही है, कहीं हमारी अपनी गलतियां भी हैं कहीं?
0: अंकल मुझे लगता है कि हम प्रॉपर तरीके से और क्या हम काम कर सकते हैं। अभी आप देखें एज ऑफ रीसेंट क्या मैं उन्होंने क्या मैं जो क्लाइमेट मिनिस्टर अनाउंस किया वो एक अफगानी औरत है, उसने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया, समिया नावन ने। लेकिन मेरी बस ये क्या मैं अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या मैं पाकिस्तानी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं पॉलिटिक्स में, इतना ज़्यादा कि हम हमारा एक्सपीरियंस रहा, इतने हम लोग हैं, अभी तक हमारे पास से कि पाकिस्तानी मेयर नहीं बना। तो ये आपको
1: क्या वजह
0: सवाल
1: क्या है,
0: उठाने
1: वजह
0: पड़ते
1: क्या
0: हैं,
1: है?
0: और यही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वजह क्या है
1: हम वोट देते
0: इसका।
1: नहीं हैं, अब हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं।
0: ये भी चीज़ है कि हम जो ऐसे कम्युनिटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिवीजन है। अब आप देखें पिछली दफ़ा क्या मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में कासिम भाई वाहिद पाकिस्तानी थे जो क्या मैं कुंभ मेघनी से खड़े हुए थे, उसके उनके साथ साथ क्या समिया नावा खड़ी हुई थी, मतलब दो मुसलमान थे। कुंभ मेघनी में कितने मुस्लिम लोग हैं, और आपके सामने है जितने वोट उनको मिले हैं वो क्या सही रिफ्लेक्शन नहीं है जो यहाँ की कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है। तो मेरे कहने का मतलब सब ये है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें अपने कैंडिडेट्स को तो हमारे लिए आसानियां भी हो जाएंगी, क्यों इन द एंड ये रूल्स हमारे लिए है ना। अगर क्या हम रूल सही लोग नहीं आएंगे अंदर तो हमारे खिलाफ रूल्स बनेंगे।
1: आप यहाँ पैदा हुए, आपने यहाँ तालीम हासिल की, आपने कानून को फॉलो करते हैं, तो उसके बावजूद अगर आप प्रॉब्लम बताते हैं, फिर आम आदमी का क्या हाल होगा?
0: अंकल यही क्या मेरी सबसे बड़ी कंसर्न है, अगर वो क्या मैं मुझे सिकंदर भाई या किसी और क्या जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं हमें ऐसे ट्रीट करें तो जो आम आदमी है उनके साथ क्या होता होगा क्या मैं ऑन अ डेली रूटीन। तो बेसिकली हमें क्या एक चेंज लेके आना पड़ेगा और ये राम राम से आएगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम साथ इकट्ठे हो गए क्या हम अग्री करें कि नहीं बिल्कुल हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए तो फिर ही क्या हम आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं।
1: अच्छा, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम खुद वोट नहीं डालते, तो फिर हम डैनशो को किस तरह कहें कि वो हमें वोट डालें?
0: बिल्कुल अंकल हमें क्या हम रियलाइज करना चाहिए कि वोट की क्या इम्पोर्टेंस है, एंड ये नहीं है कि क्या मैं अच्छा बारिश हो रही है इस दिन तो हम क्या वोट नहीं डालना चाह रहे, ये अक्सर ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे अपने दोस्तों के साथ कि वो कहते हैं कि यार कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पिछले कम्यून के इलेक्शन में आप देख सकते थे कि क्या मैं हमारे कम्युनिटी के एक कैंडिडेट थे जो एक वोट से हार गए थे, तो ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं तो
1: क्या इसमें
0: हमें
1: हमारी
0: ऑब्वियसली
1: पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो नहीं शामिल?
0: अंकल ये तो आप लोगों को बेहतर पता होगा, मैं तो होप करता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली कोई ना कोई हद तक ये भी सच्चाई है।
1: सच्चाई है। तो आखिर में हमारे पास 1 मिनट है, आप किस तरह क्या कहेंगे आखिर में अपने वोटर को, सपोर्टर को, सामाइन को, नाजरीन को?
0: जी शुक्रिया, बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस मुकाम पे लेके आ गए हो आपने कि मुझे क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी तो ऑब्वियसली ये ख्वाहिश थी कि क्या मैं कम्युनिटी के इलेक्शन में हमें 2 मंडेट मिलते कि मैं एंड सेकंड भाई साथ साथ क्या हम जाते वहाँ। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन बन गई है, उसको हम फिर देख के चलेंगे। एंड खुशी की ये बात है ना कि क्या मैं हमारी कम्युनिटी के बंदे को मिला है वो मंडेट,
1: इसमें कोई
0: क्योंकि ये
1: शक
0: भी तो
1: नहीं,
0: हो
1: ये
0: सका
1: फ्री
0: किसी
1: क्रोने
0: गोरे
1: का
0: को मिल
1: मैंडेट है,
0: जाता। जी
1: ये फ्री क्रोने का मैंडेट है, आपकी पार्टी का मैंडेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ऑब्वियसली कोशिश ये होगी कि मैं जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको लेके चलूं। अगर कभी भी कोई आपको इश्यू सामने नजर आए, आप मुझे क्या मेरे से रब्ता करें। एंड फिर होपफुली मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकली सेटिस्फाई करूं।
1: अच्छा, मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामान्य नाज़रीन, ये नौजवान सिटी काउंसलर हैं, पहली दफ़ा ये अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे पहले इनके पास काफ़ी सारे तजुर्बात हैं, पार्लियामेंट का इनको तजर्बा है, ये इलेक्शन लड़ चुके हैं पार्लियामेंट का, अब कम्यून में बैठे हैं, ये 4 साल कम्यून में बैठेंगे, तजर्बा हासिल करेंगे, अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे, यहाँ का सिस्टम ऐसा है, कानून तब्दील नहीं होंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामिन नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि इंट्रो में कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क स्वीडन में इलेक्शन हुए, चूँकि डैनिश भी हैं, दोहरी शरीयत का निज़ाम है, डैनिशों ने भी वोट डाले, जिनके पास स्वीडन की नेशनल शरीयत थी। इसी तरह दोनों शहरों में आना जाना लोगों का लगा रहता है और उस पर ये बातचीत भी करते रहते हैं। ये सारे बाशऊर हैं, इस सियासत को समझते हैं, जिन ममालिक में रहते हैं उस मुल्क की सियासत पर इनकी गहरी नज़र रहती है। हमारे साथ इस वक्त कामरान कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, एनालिस्ट हैं ज़ुबैर हुसैन साहब, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब, और नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मालमों में रहे और बड़ी गहरी नज़र है इनकी, इन्होंने के सियासत में जो है वो इस इलेक्शन में बड़ा किरदार अदा किया। तो सब मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं।
2: राजा साहब, आपको बहुत बहुत सलाम, और सब साथियों को, सब नाजरीन और सब सुनने वालों को सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। शुरू करते हैं हम कामरान से। कामरान, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गया, आप क्या कहेंगे?
3: सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको, आपके सामीन को बहुत बहुत सलाम अलैकुम रहमतुल्ला। हाँ जी, इलेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। 26 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जो अभी जो जितने भी है, अब देखते हैं जो मतलब पार्लियामेंट में जो सीटें निकली हैं वो लेफ्ट विंग की वो 176 है और राइट विंग की जो है वो 173 है। तो अब देखते हैं जी आगे, और 28 सितंबर को स्पीकर है जो स्वीडन पार्लियामेंट, उन्होंने इजलास बुलाया है, और 29 सितंबर को वहां पार्लियामेंट में वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। जी राज,
1: प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग होनी है। जुबैर साहब, आपने इस इलेक्शन को डेफिनेट वाच किया होगा, एनालाइज भी किया होगा, आपका तजिया क्या कहता है?
4: देखिए राजा साहब, जहां तक इलेक्शन की बात करें तो लाजमी सी बात है कि इस पे हर पाकिस्तानी की नजर रही, और खास तौर पे माजरीन के लिए बहुत ही अहम किस्म का जो ये इलेक्शन था वो रहा। अगर हम इलेक्शन के नतज को देखें तो यकीनी तौर पर नतज हैरान कुनी है। स्वीडन में इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है, स्वीडन डेमोक्रेट्स की जो मकबूलियत थी, वो हालिया दिनों में कुछ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एक जमाना था लोग इनको छुप कर वोट दिया करते थे और बताने से डरते थे, लेकिन इस बार न सिर्फ लोग फखर से वोट देकर सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे, बल्कि पार्टी के जुलूसों और जलसों में तिल धरने की जगह तक नहीं होती थी। फिर बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि स्वीडन डेमोक्रेट्स या जो आपका इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं वो हारी किस तरीके से, या उनका जो है वोट बैंक है वो कम कैसे हुआ? तो हुआ यूं कि एडवांस वोटिंग, जिसको हम फोर्थ ही द्रोसनी कहते हैं, कि उन दिनों में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने हंगामा बर्पा कर दिया कि एसडी का एक शेंस्तेमान, यानी कि उनका एक रहनुमा था, उनका रशिया से जो है वो कोई ताल्लुक खुलकर सामने आया, और ये स्कैंडल कुछ बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पर चलता रहा, जिसकी वजह से स्वीडिश वोटर जो है वो अपने मुल्क की सलामती को मद्देनजर रख के उन्होंने इस मामले को हसास जाना और स्वीडिश डेमोक्रेट्स का जो वोट बैंक है वो इसको आप समझें कि जबरदस्त एक धचका लगा और नुकसान हुआ। अगर हम इस वक्त जो बात करें सेंटर लेफ्ट की जीत की, तो कोई ये बड़ा कारनामा नहीं है, फकत 3 मैंडेट से इन निशस्तों का फर्क है, यानी कि जो सेंटर लेफ्ट की गवर्नमेंट है उनको या जो पार्टियां हैं उनको 176 सीटें मिली है बमुकाबला 173 जो हालिया हुकूमत थी उनके मुकाबले में। अगर हम हुकूमत साजी की बात करें कि क्या मैकडेलना एंडरसन इसे आसानी से हुकूमत बना लेंगी, तो दरअसल 2018 की तारीख याद करें कि 2018 में स्वीडन में भी इसी ही बारीक सूरत हाल बनी थी कि तकरीबन 134 दिन तक मामला थे, लेकिन अब जैसे कामरान ने बताया कि अब बहुत सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं और हो सकता है कि वजीर आजम की वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, लेकिन मामला आसान नहीं है। स्वीडन के रिजल्ट का जो माजरीन हमारे जो खुशफहमी में मुब्तला हैं उनका भी जो है आप समझें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि चीजें खुल के सामने आएंगी। अब अगर हम इस नुक्ते की बात करें कि माजरीन की उनके लिए कितना फायदेमंद हुआ, तो माजरीन के लिए ये खुशी की तो बात जरूर है कि सेंट्रल लेफ्ट पार्टी जो है वो उन्होंने हुकूमत बनानी है और उनकी मौजें हो जाएंगी, लेकिन मैं अपील करता हूं कि इस खाम ख्याली से बाहर निकलें। हुकूमत बनने के बाद भी इमिग्रेशन के हवाले से कोई खातिर ख्वाह नरमी होती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ मैं सामीन को बताता चलूं कि खुद सोशल डेमोक्रेट्स ने भी अपने दौरे इक्तदार में ऐसे कई कवानीन को मंजूर किया कि जो माजरीन के हक में नहीं थे, और अब ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पिछली हुकूमत ने जो सख्त कवानीन बनाए हैं ये नई हुकूमत इनको खत्म कर देगी या इनमें कोई नरमी लाएगी। क्यों नहीं लाएगी उसकी भी एक बड़ी वजह है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। स्वीडन में कानून बनाने का एक खास जो है वो आईनी और पार्लियामानी तरीकेकार है, यानी कि सबसे पहले एक बाजाबता कमेटी होती है जो बनने वाले कानून का तफसीली जायजा लेती है। उस कमेटी में अपोजिशन के सियासतदान और कानूनी माहरीन भी शामिल होते हैं। जब कमेटी इस कानून को जायज करार देती है तो उस कानून की मंजूरी के लिए वोटिंग का सिलसिला पार्लियामेंट में होता है। इस वक्त स्वीडन की जो आवाम का सबसे बड़ा है वो ये रहा है कि गैर कानूनी और बगैर काम करने वाले जो माजरीन हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, इमिग्रेशन के कवानीन सख्त किए जाएं और जुर्म करने वालों से शहरियत तक वापस लेने के लिए कानून साजी के मुतालबात अवाम के आप समझेंगे लिस्ट में सर फहरिस्त हैं। नई बनने वाली हुकूमत कभी भी स्वीडिश अवाम के इस मुतालबे के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेगी। अगर इन्होंने माजरीन के लिए नरमी की तो सोशल डेमोक्रेट्स अपनी गिरती हुई साख को बिल्कुल संभाल नहीं सकेंगे और इनका वोट या तो छोटी जमातों में बढ़ जाएगा या मुस्तकबिल में दाएं बाजू के लिए हमेशा के लिए राह अमवार हो जाएगी। जी राय साहब,
1: हमेशा के लिए राह अमवार हो जाएगी। फैसल, आप नौजवान हैं, आप मालमों में रहे, बहुत सारे इलेक्शन को आपने देखा, उससे पहले भी इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के मुतालिक आप क्या कहेंगे?
5: अस्सलाम वालेकुम राजा साहब और आपके जितने भी साथ दोस्त हैं, जुबैर भाई हैं, कमरान भाई हैं, नईम भाई, शाह साहब को मेरा बहुत सलाम। तो ये राजा साहब इलेक्शन जो स्वीडन में, जैसे जुबैर भाई ने भी कहा है, कमरान भाई ने भी जो बातें की हैं, इसके बाद कोई ज्यादा तफसील तो मेरा ख्याल है जो है वो नहीं बनती, लेकिन ये बात यही समझ लें कि जो रिजल्ट आज से 3-4 महीने पहले डेनमार्क में आया था वही रिजल्ट स्वीडन के अंदर आया है। यहाँ मैड्रिड लास लुकस जो है वो मेन प्लेयर बन गया था, उधर सेंटर पार्टी मेन प्लेयर बन गई है। अब जिस तरफ उसको अच्छी डील मिलेगी हुकूमत उस तरफ बनेगी, लेकिन उधर मेरा ख्याल है जैसे लास लुकस भी इधर सोशल के साथ चला गया था, मैटे की हुकूमत बन गई, इस तरह उधर भी जो है सोशल की हुकूमत, सोशल डेमोक्रेट की जो है हुकूमत बनने का चांस है। जैसे दूसरे नंबर पे जुबैर भाई ने ये एक बात की है कि अगर कोई इमिग्रेशन वाला ये सोच रहा है कि उसके बाद नरमी होगी, तो वो बातें इनकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि नरमी के कोई चांस नहीं है, सख्तियां ज्यादा हो सकती हैं, नरमी नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे सिर्फ इधर डेनमार्क में जब इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट के होते हैं, लेकिन जब स्वीडन में होते हैं तो उधर तीनों इलेक्शन एक ही दिन पर होते हैं। तो इस तरह जो बल्दियाती इलेक्शन भी उधर हुए हैं तो उसपे मालमो कमून में हमारे 3-4 पाकिस्तानी थे और उनका भी रिजल्ट आया है। तो मैं तो अपने भाई कामरान को, जिसके मैं पूरी कंपेन भी कर रहा था, वो जो है वो तकरीबन कामयाब उम्मीदवारों में वो 8वें नंबर पे रहा है, अपनी सोशल डेमोक्रेट में अपनी पर्सनल वोट की वजह से 630 लोगों ने इस पर एतमाद का इजहार किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसने अपने कुछ हमारे फॉरनों के एरिए थे जैसे रूसनगोड, जहाँ की ये सोशल डेमोक्रेट का हेड भी रहा है, हेड है बल्कि, उधर से भी इसने क्लीन स्वीप किया है अपनी पर्सनल वोटों में। तो माशाल्लाह मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनका पहला इलेक्शन था और इन्होंने जो 30-30 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका डट कर मुकाबला किया है। तो अभी देखते हैं मालूमों में जो है वो भी हुकूमत
1: के पास जाऊंगा। तो ये जो कोई मुश्तरका उम्मीदवार भी थे उनको कितने वोट मिले हैं?
5: मुश्तरका उम्मीदवार तो मुश्तरका तो कोई नहीं उनको आप कह सकते, बस वो ऐलानों की आता की मुश्तरका थे वो उनका माशाल्लाह, वो हमारे अंकल ही हैं, वो तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उस वक्त भी उनको बोला था वो तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके जो उनके लिए वो कभी इतनी ज्यादा अपनी कंपेयर नहीं करते, तो लेकिन ठीक है वो अपनी मर्जी से मैदान में थे तो उन्होंने अपना मुकाबला, उनको भी 300 वोट मिल गए हैं जो उनके साथ जो लगे हुए थे और उनके लिए भी कंपेन अच्छी की है ने, तो 300 वोट उन्हें। लेकिन कमरान की जो है वो 630 वोट, एक बहुत अच्छी जो हमारे लोगों का एतमाद है, पाकिस्तानियों का, अरबियों का, अफगानियों ने भी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की है कमरान भाई को, और पहले इलेक्शन में 630 और अपनी पार्टी में पर्सनल तौर पे जो है वो पर्सनल वोट 8वें नंबर पर कमरान भाई ने, ये हम बिल्कुल आखिरी 90% रिजल्ट पर हम जो है वो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पर थे, लेकिन वो फिर एंड पे कुछ इलाके ऐसे आए जहां से पर्सनल वोट दो तीन कैंडिडेट और के निकल आए जिसपे कमरान भाई को जो है फिर वो 8वें नंबर पर जो है वो
1: 8वें नंबर पर आना पड़ा। शाह साहब आपने ये सब को सुना देखा तो आप क्या इसमें इजाफा करेंगे या क्या सवाल बिल्ड करेंगे?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से तो सब यंगस्टर्स हैं लेकिन एक चीज इनको याद रखनी चाहिए कि सियासत बड़ी बेरहम होती है और ये बहुत वक्त मांगती है, ये कुर्बानी मांगती है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहूंगा, जो कुछ मैंने डेनमार्क और स्कैंडिनेविया की सियासत को गहरी नजर से देखा और इसका तजिया किया, तो वो ये है कि जब इनको क्या वजूहात थी, किस वजह से हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डेंचों के या यूरोपियन या स्वीडिश या स्कैंडिनेवियन किसी भी कंट्री में अपने वोट हासिल नहीं कर सकते पर्सनली, वो इसकी वजूहात ये है कि हम वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम लोग उस वक्त अपनी कैंपेन शुरू करते हैं। हालांकि एक सियासतदान जो है वो सोते जागते हुए सियासतदान होता है, उसको लिखना पढ़ना से ज्यादा जो है सेमिनार करने चाहिए। अगर ये सारे मिलकर कोशिश करें कि कोई ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, हमारे डेनमार्क के अंदर भी पॉलिसीज है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बकायदा आपका कल्चरल या कोई ऐसे प्रोग्राम करे तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है उसको वो मिस यूज करते हैं, तो लिहाजा काफी कम्यूनों के अंदर पाबंदी है। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली स्वीडिश और डेनिश और नॉर्वेजियन आइन के मुताबिक चले और लोगों को अवेयरनेस दें, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि अपने लोगों को बनाएं बल्कि मुख्तलिफ अकवाम जो रह रही है वहां पे, पोलिश है, स्वीडिश है, चेक्स है, सबको आप इनवाइट करें और उनको कहें कि ठीक है आप आए, वहां उनको एक बोतल कोको कोला या एक समोसा पे पकौड़े पे ही आप उनको रखें, लेकिन उनके साथ जब आप घुल मिल जाएंगे तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा सहूलत मैसर होगी और आपके जो है वो चाहने वाले जो है वो ये देखेंगे कि ये एक बाहर से आया हुआ हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे आइन की प्रोटेक्शन कर रहा है। सबसे बड़ी जो मेरे तजिया में ये बात आई है कि ये आपके किसी भी कॉल ऑफ ऑल को ये आपको नजरअंदाज करके सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं, वो है कत्लो गारत। ये कहते हैं कि भाई हमने अपने मुल्कों में अपने लोगों पे कत्लो गारत जो करते हैं उनको कड़ी सजाएं देते हैं, उनको हम जो है माशरे में इतना नाम नहीं देते।
1: चलिए शाह साहब ये बात तो आप इस सवाल बिल्ड करते हैं, हमें शायद ने भी ज्वाइन कर लिया, शायद आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शायद आपको आवाज आ रही है समान, शायद को आवाज नहीं आ रही। शाह साहब आप
0: तो चलते मैं एक मिनट आता हूँ, मुझे आवाज आ रही है, आप एक मिनट दें मुझे बस।
1: चले जब आ जाए तो आप बता दें। शाह साहब आप बात कर रहे हैं, अभी हम शायद से बात करते हैं, चूंकि ये इस پروگرام میں شامل ساتھ ساتھ ریز جو الیکشن سویڈن میں ہو رہے تھے یہ اپنے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے, اور چونکہ آج کل وہ دوسری چیزوں پہ لگے ہوئے اپنے کام کے سلسلہ میں گارمن سٹاک ہول میں اس وقت ان کی آواز مجھے آ رہی ہے, وہ کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو ان سے بات کریں گے. جو ہی ان کے پاس مائک آتا ہے تو میں کامران کی طرف چلوں گا. کامران, اب آپ کو 630 کے قریب پرسنل ووٹ ملے ہیں, تو یہ ووٹ ملنے کے بعد اب آپ پارٹی پوزیشن کیا ہوگی آپ کی؟
3: جی جی, السلام علیکم رحمت اللہ. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ جیسے ماشاء اللہ یہاں پر ہمارے زبیر صاحب مطلب ہیں, ان کا بہت اچھا ایک تجزیہ ہوتا ہے, میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں ماشاء اللہ, وہ بڑے چینلز میں بھی ان کی ہوتی ہیں, انالائز دیتے ہیں اپنے. اور فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا, انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ہمیشہ, اور ہمیشہ جو ایک بھائی فرینڈس جیسے فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے ایز اے جرنل کی طرح, وہ فیصل مرزا صاحب ہیں. اور شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے میرے ساتھ کیپ ان ٹچ رہے جی. اور شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بالکل جی, الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہوا ہے. میرا پہلی دفعہ تھا مطلب ہے اس میں, میں نے کینڈیڈیٹ ایز اے سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے, تو جو بہت سے ہمارے دوست اور بھائی تھے جو مجھے بہت سارے مسئلے ہوئے یہاں پر, وہ ایسے ہوئے کہ وہ جو ہماری یورپی یونین کے بھائی تھے ان کا فرسٹ ٹائم تھا ووٹ کے لیے, تو ہم نے ان کی بہت زیادہ ایکسپلین کی, انہیں بتایا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ وہاں پر انہوں نے مطلب ہے ہم نے ڈفرینٹ جگہ پہ کارنر میٹنگ کی اور ایکسپلین کیا بہت سے لوگوں کے ساتھ, تو پھر الحمدللہ لوگ نکلے. اور میں نے پہلی دفعہ اپنی لائف میں جو مالمو میں یونٹی کے ساتھ اور دل کے ساتھ لوگوں نے ماشاءاللہ آئے اور ووٹ ڈالا, میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں جی. رہ سب
1: بہت شکریہ کامران. زبیر بھائی, آپ نے ان چیزوں کو دیکھا, آپ لکھتے بھی ہیں چونکہ میڈیا کے پروگرام بھی آپ بناتے رہتے ہیں, تو اور بھی امیدوار تھے وہ بھی الیکشن میں آئے, دوسری تنظیمات کے لوگ بھی تھے, تو اب یہ جو کامران کو ووٹ ملے ہیں ان کی پارٹی پوزیشن میں کیا کیا پاسبلٹی ہیں؟
4: دیکھیں رجا صاحب, اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سویڈن کے الیکٹرو سسٹم کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ الیکشن یہاں پر کس طریقے سے کام کرتا ہے. اگر میں مالمو کو مد نظر رکھ کر کچھ حقائق بتانا چاہوں تو کچھ معاملہ یوں بنتا ہے کہ مالمو میں یا سویڈن کے اندر تینوں انتخابات, یعنی کہ پارلیمنٹ جس کو رکسداگ کہتے ہیں یہاں پر, پھر ریجن یعنی کہ ہم اگر اس کو اپنی زبان میں کہیں تو صوبائی نشست ہوتی ہے, پھر کمیون یعنی کہ میونسپل, تمام یعنی کہ تین کے تین انتخابات ساتھ ہوتے ہیں, ایسا فیصل نے شروع میں بھی بتایا تھا. سامعین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سویڈن میں پاکستان کی طرح حلقوں یا شخصیات کی بنیاد پر الیکشن نہیں لڑا جاتا, بلکہ یہاں سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالا جاتا ہے. پارٹی اپنے قابل اور منجھے ہوئے سیاستدانوں کو ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 لسٹ میں رکھتی ہے, باقی ایماندہ صفوں میں موجود امیدواروں کو لسٹ میں نیچے کے نمبر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سب مل کر پارٹی کے لیے ووٹ جمع کر سکیں. اگر ترجیحی لسٹ میں پیچھے موجود کسی امیدوار نے ابتدائی 10 امیدواروں کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو پارٹی کو ووٹ پڑا اس کے تقریباً 5% اس کو ذاتی ووٹ, جس کو پرسون روس کہتے ہیں, وہ حاصل کرے. بڑی پارٹیوں میں چونکہ یہ 5% کا ہدف ہزاروں ووٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے حاصل کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے, اور انہی حصوں میں مالمو کے نتیجوں کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ یوں ہے. مالمو میں ہمارے پاس رکس تھا یعنی کہ پارلیمنٹ کے لیے جو سوشل ڈیموکریٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کو تقریباً 61,724 ووٹ ملے ہیں. اگر ان 61,724 ووٹوں کا ہم 5% نکالیں تو تقریباً ایک امیدوار جو کہ ٹاپ 10 لسٹ میں نہیں ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر آنے کے لیے 3,087 ذاتی ووٹ چاہیے تھے. تو ہمارے دو پاکستانی امیدوار تھے اس لسٹ میں, ایک کا نام نجم ملک ہے جو کہ نمبر 17 پہ تھا پارلیمنٹ کی لسٹ میں, اس کو تقریباً 233 ووٹ ملے جو حتمی نتائج آئے ہیں. پھر اگر بات کریں منیر نیازی کی, وہ سب سے لاسٹ پہ تھے, 21 نمبر تھا, ان کو 63 ووٹ ملے ہیں پارلیمنٹ کے لیے, جبکہ ایک شخص کو یا ایک امیدوار کو تقریباً 3,087 کا ہدف حاصل کرنا تھا تاکہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچ سکے. اور یوں یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکس داغ کے لیے کوئی بھی امیدوار پارلیمنٹ کے لیے نہیں پہنچ سکا اور اس دوڑ سے کافی دور تھا. پھر اگر ہم صوبائی کی نشست کی بات کریں تو سوشل ڈیموکریٹس کو تقریباً ریجن اس کونے میں 68,684 ووٹ ملے, یہاں 5% کے حساب سے امیدوار کو تقریباً 3,434 ذاتی ووٹ درکار تھے. اور اب تک کی جو میرے پاس معلومات ہے اس لسٹ کے اندر کوئی پاکستانی خاص طور پہ موجود نہیں تھے ان لسٹوں کے اندر سوشل ڈیموکریٹس کے. پھر بات کرتے ہیں کمیون کی, جس میں ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کے نام تھے. مالمو میں میونسپلٹی میں سوشل ڈیموکریٹس کو تقریباً 64,700 वोट पड़े, यानी इब्तदाई सफों से हटकर लिस्ट में निचले नंबरों पर मौजूद उम्मीदवारों को काउंसलर बनने के लिए तकरीबन 3,235 जाती वोट की जरूरत थी। हमारे चारों पाकिस्तानी उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ यूं है। नजम मलिक नंबर 22 पर थे, उनको 272 वोट मिले। मुनीर नियाजी जो है वो 48 नंबर पे थे, उनको 70 वोट मिले। फिर अमजद खान साहब जो के 56 नंबर पे थे, उनको 338 वोट मिले। और कामरान अनवर जो के नंबर 62 पर थे, उनको 630 वोट मिले। तो कुल अगर आप इसका जो हासिल कलाम करें वो कुछ यूं है कि कुल मिलाकर कोई भी पाकिस्तानी ना काउंसलर बन सका, ना सूबाई नशिस्त हासिल कर सका और ना ही पार्लियामेंट में जगह बना पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है राजे साहब, हमारी दो बड़े अलमी है। सबसे बड़ी बात की जाए कि इसका निचोड़ यूं है कि हमारे यहाँ सिर्फ कम्युनिटी में एक दूसरे को हराने का मुकाबला उरूज पर रहा। इलेक्शन आते ही मुख्तलिफ ग्रुप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सोशल मीडिया में ग्रुपों में गेमा गेमी मचाते हैं, बस इसके अलावा कोई खास काम नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हम माजरत के साथ मुर्गे लड़ाते हैं कि किसका कुक्कड़ कितना तगड़ा है, और फिर साढ़े कुक्कड़ दी जीत है के नारे बजाते हैं, और हालांकि दरअसल हमने कुछ भी हासिल नहीं किया होता। अगर हम यहाँ पर दो अलमियों की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा सियासी जमातों का अलमिया है। स्वीडन में सियासी जमातों का जो सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि किसी की भी तारकीन वतन या किसी भी नुमाइंदे की ना तालीमी काबिलियत देखी जाती है, ना उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड या बैकग्राउंड चेक किया जाता है, और उसे लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया जाता है बतौर उम्मीदवार। फिर दूसरा हमारी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे उम्मीदवार हमेशा बड़ी सियासी जमातों के पीछे भागते हैं, यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स या मॉडरेट्स के पीछे भागते हैं। वहां 5% का कोटा इतना बड़ा हो जाता है कि आपको जाती वोट 3,000 से 4,000 वोट तक हासिल करना होता है, जो कि कोई भी उम्मीदवार उसको पूरा नहीं कर पाता। अगर हम बात करें कि हमसे 100 गुना बेहतर सोमालियन कम्युनिटी है, उनके 5 नुमाइंदे इस बार स्वीडन की पार्लियामेंट तक पहुंच गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इन्होंने अकल का इस्तेमाल किया, छोटी सियासी पार्टियों का इंतखाब किया जहां 5% का जाती वोट का जो कोटा था वो कम था, यानी कि कुछ शहरों के अंदर उनको 500 वोट दरकार थे, कहीं 600 से पूरा करके पार्लियामेंट तक वो पहुंच गए। और हम नूरा कुश्ती समझ लें कि उसमें ही लगे रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे स्वीडिश सियासतदान लिखकर पिंड दे लोगों नू पागल बना दे रहे हैं। तो असल बात यह है कि हमारे जो सियासतदान है, अगर मैं कामरान की बात कर लूं, 630 उसको काफी अच्छा वोट पड़ा, और ये जाती वोटों में पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो काफी ज्यादा था। लेकिन अगर ये किसी छोटी पार्टी के अंदर होते, वेंस्टर पार्टी में होते, अगर ये मिलियो पार्टी में होते, अगर ये सेंटर पार्टी में होते, तो आज ये काउंसलर की निशिस्त के लिए एलिजिबल हो जाते। मगर मसला ये है कि सोशल डेमोक्रेट्स को काफी ज्यादा वोट पड़ा और उसका 5% वोट हासिल करना जाती तौर पर बड़ा मुश्किल काम है। हम ग्रोहों में बटे हुए हैं तो वो बड़ा मसला हो जाता है। अलबत्ता ये है कि कामरान की जो पार्टी की जो पोजीशन है, जो लिस्टों में उनका नाम है, वो जरूर आगे आएगा, और हो सकता है कि इनको पार्टी जो है वो हमारे यहाँ नेमदन होते हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं सियासी जमातों के, कमेटियां होती हैं, उसके अंदर इनको किसी न किसी जगह पर बिठाया जाएगा। अलबत्ता वो गवर्नमेंट का ओहदा तो नहीं होता, लेकिन इनके चांस ये हैं कि अगले इलेक्शनों में ये किसी अच्छी पोजीशन पर होंगे, यानी कि इनका नाम लिस्टों में ऊपर होगा, और हो सकता है कि आने वाले वक्तों के अंदर इनको काउंसलर की निशिस्त के लिए एलिजिबल करार दिया जाए। जी
1: जी कामरान, आप दें जवाब। जी जी,
3: मैं थोड़ा सा एक दो तीन चीजें बस, एक है मेरे जो मैंने जुबैर साहब की जो कन्वर्सेशन सुनी है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत यूनिटी दिखाई है और मैं उनका थैंकफुल हूँ। वोट उन्होंने डाले हैं, वो लोग निकले हैं, और हमेशा जैसे मैंने देखा है उन्होंने साथ दिया, दिल के साथ साथ दिया, और फिर लोगों की अपनी ओपिनियन है, जिसको वोट डाले इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात मैं ये बताऊं, जो उन्होंने 5% वाली बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इस 5% में सिवाय हमारे 66 जो थे वो लिस्ट के अंदर थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बल्दियाती इलेक्शन की, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो 5% ने अबूर किया वो है कतरीना ने। बाकी जो 65 जो पूरे लिस्ट में लोग थे, उन्होंने किसी ने भी वो 5% जो 3000 समथिंग है उसको प्रूव नहीं किया। लेकिन इसमें ये दो बात होती है कि आप जैसे बैस साहब ने भी इसको एक्सप्लेन भी किया पहले कि यहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है, इनकी बात से बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पार्टी को वोट दिया जाता है। तो ये होते जब पार्टी के अंदर जो पहले वाले जो होते हैं جو ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں لسٹ میں, وہ ان کے لیے جیسے 25 بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ بالکل پیورٹی ان کی نمبر ون ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. لیکن آپ کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایس سہتارے انہیں کہتے ہیں ریپلیس. اگر ان میں سے کوئی بندے ویسے 25 میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے, تو جو اس کے نیچے والے ہوتے ہیں نا, وہ پارٹی کی سواب دی دی ہوتی ہے کو وہ اوپر اس کو لا سکتے ہیں. اور بالکل یہ بات بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی جیسے کوئی بندہ اگر ووٹ مطلب لے لیتا ہے اور پھر اینڈ میں اس کا لسٹ میں نام بالکل اوپر چلا جاتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہی ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ واقعی اس کو تقریباً اراؤنڈ 65,000 اس کو ووٹ ملا, اس کو مشکل ہے یہ گول اچیو کرنے کا. لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا اور وہ بالکل انہوں نے ایک میتھمیٹک طریقے سے بات بتائی ہے, لیکن جو مقصد ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کس پارٹی کی آئیڈیالوجی اور کس پارٹی کے جو اس کے مطلب ہے جو اس کی وہ ہے رولز ہیں گراؤنڈ رولز ان کے ساتھ آپ ایگری ہیں. سوشل ڈیموکریٹ کے جو میں نے منشور پڑھا ہے جو ان کے ساتھ میں ایگری ہوں, جو چیزیں ہیں وہ میں اپنے دل کے ساتھ ایگری ہوں, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی ایک قسم کی جو انہوں نے نام لیا ویسر پارٹی ہو گیا یا پھر انہوں نے ایک گرین پارٹی جس کو ملیو پارٹی کہتے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹ یہ ہیں تو بالکل لیفٹ ونگ پارٹی. لیکن میں جو سمجھتا ہوں سوشل ڈیموکریٹ کا ایک بہت ایک ان کا ہسٹری رہ چکی ہے سویڈن بنانے میں اور وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن اب انشاءاللہ اب جو مجھے ووٹ ملے ہیں تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی سے ہم بالکل بات کریں گے, تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہمیں کہتے ہیں. جی رہ صاحب,
1: پارٹی کیا کہتی ہے فیصل؟ آپ دیکھیں کہیں یہاں معلوموں میں چونکہ آپ نوجوان ہیں لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں, تو اپنا شیخ صاحب تھے انہوں نے اپنا ایک مشترکہ امیدوار بنایا تھا, وہ بھی سوشل ڈیموکریٹ کے تھے, تو ان کو ووٹ جو ہے وہ 3 سے اوپر پڑے تقریباً بتا رہے تھے زبیر بھائی بتا رہے تھے. تو کیا اس میں بھی کہیں سیاست میں پی ٹی آئی تو نہیں آ گئی؟
5: یہ راجہ صاحب ابھی زبیر بھائی نے جو آپ کو باتیں کی ہیں میں تقریباً ان سے نا 99% جو ہے نا میں اسے ایگری ہوں, لیکن وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جمہوریت ہے. جمہوریت جیسے کامران نے کہا ہے کہ ہر کسی کو حق ہے, وہ پہلے تو اس پہ لگے رہے کہ کامران ہی بیٹھ جائے, جی کامران الیکشن ہی نہ لڑے, ایک کینڈیڈیٹ لڑے, یار سب کا اپنا حق ہے. کامران نے بھی اپنی پارٹی میں محنت کی ہے, لوگوں میں بھی محنت کی ہے, جا رہا ہے, اس کو پہلی بار چانس ملا ہے. اس کو پچھلی بار بھی اس پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ مل رہا تھا لیکن اس نے نہیں لیا, کیونکہ ہمارے کمیونٹی اتنی نہیں ہے, نہ اتنی ووٹ ہے, نہ اتنی پہچان ہے. ابھی اس کو 6-7 سال ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر, تو اس لیے جو ہے وہ ہر کسی کا جو ہے وہ حق ہے. باقی جو بات رہ گئی ہے زبیر بھائی نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ادھر 5% والا جو سسٹم ہے اس کے پر, لیکن کسی نے میٹ بھی نہیں کیا. ایک جو امیدوار ہے میئر کی اس نے تو اس کو میٹ کر لیا, باقی تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, ابھی کوئی بیٹھتے ہیں ظاہری بات ہے پارٹی بھی اب دیکھے گی. ایک بندے نے ٹاپ 10 میں ووٹ لیے ہیں, اس میں چلیں اگر سیٹ نہیں نکلی تو اس کو کوئی نہ کوئی وہ عہدہ تو دینے کی دیں گے, اور کامران بھی اس کے لیے محنت کرے گا, ہر سیاستدان کا یہ حق ہے. تو دوسرے نمبر پہ اتفاق میں تو سمجھتا ہوں کہ ووٹ تو ملے ہیں, اس بار پہلی بار پاکستانی نکلے ہیں. پچھلی بار زبیر بھائی نے خود الیکشن لڑا ہے, زبیر بھائی کو بھی پتا ہے تھوڑا سا ووٹ پاکستانیوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نکلے ہیں, انہوں نے پہلی بار ووٹ دیے. اور میں مجھے اس بات کا بھی پتا ہے, میں 10-15 ووٹ تو میرے اپنے جاننے والے ووٹ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے کامران کے گننے نہیں ہوئے, کیونکہ انہوں نے ووٹ ہی غلط ڈال دیے. یہ کامران اس چیز کا گواہ ہے. ہمارے پاس جب میرے پاس تصویریں آئی تو میں نے کامران کے ساتھ شیئر کی, تو کامران
1: کا سوال تھا کہیں یہاں پی ٹی آئی یا کوئی دوسری جو پاکستانی سیاسی جماعتوں کا رول تو نہیں آ گیا؟
5: خیر صاحب اس طرح بیسیکلی تو نہیں تھا, لیکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے کچھ بھائیوں کی طرف سے, لیکن پرسنل اس طرح اوپنلی میڈیا پر تو نہیں ہوا, لیکن پرسنل ٹیلی فونوں پہ لوگوں کو یہ چیزیں کہی گئی ہیں کہ کامران بھی جی دیکھیں جی یہ مسلم لیگ نون کے پروگرام میں جاتا ہے, اس کا تعلق ہے, اس کے ساتھ فیصل ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ چلتا ہے, اس کے ساتھ نعیم ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ چلتا ہے, تو آپ ان کو جو ہے نا ووٹ نہ دیں, یہ مسلم لیگ کے اس پروگرام میں تھا, یہ اس پروگرام میں تھا. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, ووٹروں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط چیز ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. इससे नाप करना चाहिए, लेकिन वो जो है कुछ, मैं नहीं कहता कि हमारे जो अंकल हैं अमजद खान, उन्होंने खुद इस बात को शायद ना किया हो, लेकिन उनके जो साथ लगे हुए थे सपोर्टर या उनके जो उनको इलेक्शन लड़ा रहे थे, उन्होंने
1: फैसल
5: ये
1: आपके पास कोई
5: बातें की
1: सबूत
5: हैं।
1: है?
5: जी, मेरे पास सबूत है इस चीज का, और वो हमारे मेरे भी जानने वाले हैं, वो आपके भी जानने वाले हैं, कामरान के भी जानने वाले हैं, जुबैर भाई के भी जानने वाले हैं, उनको दो चार बनो तो मैं अगर कहते हैं सबूत के तौर पे, तो वो मैं आपको, आपके जानने वाले भी हैं तो वो आपको बता भी सकते हैं, और अगर आप
1: क्या
5: कहते हैं तो
1: इसमें
5: मैं
1: अदारा
5: कंफर्म भी आपको
1: मिनाजिल कुरान का
5: करवाऊंगा।
1: भी कोई रोल था?
5: अदारा मनाजिल कुरान, दरअसल राज साहब अगर सीधी बात करें तो उन्होंने एक नॉर्मल न्यूट्रल सा रोल प्ले किया है, लेकिन उनकी जो पहले दुआ हो गई थी, क्योंकि सदर हैं जनाब मनाजुल करान इंटरनेशनल स्वीडन के, हमारे भाई शेख, हमारे अंकल हैं शेख एजाज, उनके बेटे हैं बाबर शेख साहब, तो उनका जो फैसला है, और ऐसे बात है कि शेख एजाज साहब और अंकल अमजद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनका जहरी बात है वो बनता था, तो उन्होंने वो पहले जो है मनाजुल करान की जो है सपोर्ट वो ले ली थी, तो मनाजुल करान ने जो है वो सपोर्ट उनकी की है, लेकिन वो इस तरह कोई ओपन बयानबाजी नहीं की उन्होंने।
1: बयानबाजी नहीं की। शाह साहब, आपने सारा कुछ सुना कि हम यहाँ रहते हुए भी जो है अपनी पाकिस्तान की सियासी जमातों को बीच में ले आते हैं, क्या ये फायदा मंद है शाह साहब?
2: जी, मैं सबसे पहले जुबैर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत अच्छा तजिया इन्होंने किया, और अगर यही जाकर वहां सेमिनार में लोगों को एजुकेट करे तो ये कामरान वाला फैसल साथ मिलकर लोगों को अगले जो 4-5 साल के बाद इलेक्शन है उनके लिए काफी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, काफी सिखला सकते हैं। ये जो बात की है ना फैसल ने अभी कि जी फलाना शेख, फलाना आदमी, फलाना, ये अपने पाँव पे खुद कलाड़ी मारते हैं, ये डनमार्क के भी इसी तरीके से है, और स्कैंडिनेविया में भी और यूरोप में भी इसी तरह की बातें हैं। ये इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक आदमी खड़ा है, एक पार्टी खड़ी है, उस पार्टी का मंशूर क्या है, क्या वो आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल ला सकते हैं। तो इवन उस आदमी को आप पसंद करते हैं या नहीं करते, उसको आप वोट डालें, आप ये ना कहने जी कि हम फलानी मस्जिद में जाते हैं, हम फलानी जगह जाके नमाजें पढ़ते हैं, हम फलानी जगह जाके नमाजें पढ़ते हैं, तो आप जो है वो हमें, हम इसको पसंद करते हैं, इसको नहीं पसंद करते, ये गलत चीज है। सियासत देखें, जब आप इस तरह से तल्लक रखते हैं तो जो बड़ी पार्टीज होती हैं जैसे सोशल डेमोक्रेट और दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव द्वारा, तो इसकी बकायदा सिक्योरिटीज होती हैं, यहाँ पे डेनमार्क के अंदर भी सिक्योरिटी के अदारे जो है वो नजर रखते हैं बकायदा, ऊपर जो है हाई लेवल पे, क्योंकि मैं वेंचर में बैठा रहा हूँ यहाँ पे हाई लेवल पे, तो मुझे पता है कि वो ऐसी रिपोर्ट्स देते हैं कि आपके कैंडिडेट जो हैं इनकी क्या क्या मसरूफियात है, कहाँ कहाँ ये वो सारे नजर रखते हैं, ये रिपोर्ट्स जाती है पार्टी के पास, तो उससे कैंडिडेट का पता लगता है आगे लेके। सबसे ज्यादा आपके वो बंदा पार्टी में होता है, बेशक वो नया क्यों ना आए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिव करेंगे सियासत है क्या, और मैंने सियासत को किस बेस पर लड़ना है, और अवाम को किस तरह इकट्ठा करना है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम उस इलाके से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे गेटो होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरनर रहते हैं, वहां से हमें अपनी जात के लिए तो वोट मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपको निशानदेही की जाती है कि इसके अंदर जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो किस किस्म के, वो किस मेंटेलिटी से तल्ला रखते हैं, उनके नजरियात क्या है, ये सब कुछ जो है ये होता है और ये असर करता है कैंडिडेट के ऊपर। तो लिहाजा हमें बहुत कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले से ही, मैं तो कामरान को भी ये कहूंगा कि आपके साथ इतनी अच्छी टीम है, आप पहले से ही लोगों को बुलाएं, आप मस्जिद में जाएं, दूसरी जगह जाएं, उनको कहें कि मैं किसी एक मस्जिद का नहीं हूँ, मैं किसी एक फिरके का नहीं हूँ, मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ, ये आए जिसको प्रॉब्लम है हमारे साथ, और लोगों के साथ सेमिनार करें, कम से कम महीने में एक दफा आप ये कोशिश करें कि आप ये नहीं कि लीडरान को बुलाएं, देखें लोग जेलस होते हैं जब आप मुख्तलिफ जमातों के लीडरान को बुला लेते हैं, आम आवाम को वो कहते हैं जी क्या हम इस काबिल नहीं है, आप आवाम को बुलाएं, उस इलाके के लोगों को जाके मिले, ان میں پاکستانی بھی ہوں, دوسرے ممالک کے بھی لوگ ہوں, سویڈش بھی ہوں, آپ ان کو ویلکم کریں اور اپنی اپنی جو آپ کی سیاست ہے ان پہ جو ہے ان کو سمجھائیں, ان کے سوالوں کے جواب دیں, وہاں وہ کتنے بھی کریٹیکل سوال کیوں نہ ہو, پھر جا کر آپ جو ہے ایک پارٹی کے اندر مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں. اب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کامران جو ہے اس نے بڑی اچھی پوزیشن لی ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ کے نہیں جا سکتا کیونکہ اسٹاک ہولم بہت دور ہے, تو پارلیمنٹ کے اندر اگر یہ نزدیک ہوتا تو یہ وہاں کے اپنی پارٹی کے ذریعے وہاں کے ڈفرنٹ ویل کے اندر کمیٹیوں کے اندر بیٹھ جاتا, تو وہاں پہ ایک تو پارٹی پوزیشن مضبوط ہو جانی تھی, دوسرا یہ ایک بہت بڑا سیاستدان بن کے ابھرتا, کیونکہ جو اصل میں جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہوتی ہیں وہی اصل میں یونیورسٹی ہوتی ہے, اسکول ہوتا ہے جہاں سے آپ سارا کچھ پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا جو قوانین بنتے ہیں وہاں اس کو صحیح طریقے سے سیکھ کر آپ آگے آتے ہیں. تو میں نے اگر کوئی تھوڑا بہت سیکھا ہے تو میں نے بھی یہ 7.5 سال جو میں کوپن ہیگن کے اندر پارلیمنٹ کے کمیٹیوں میں بیٹھا رہا ہوں دن رات وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ تو رات کو ہوتی ہے ساری کمیٹی کی.
1: آپ نے بڑی زبردست نصیحت دینا بڑا مشکل ہے, بڑا زبردست آپ نے بتایا. کامران آپ جواب دیں کہ شاہ صاحب کی آپ کو, شاہ صاحب نے آپ کو نصیحت کی ہے, آپ کیا کہیں گے؟
3: جی جی شاہ صاحب بالکل صحیح آپ کی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے تو سب کے میں تھینک فل ہوں, میں نے کبھی کسی کو کوئی وہ نہیں کہا کہ کوئی گروپ بندی میں اگینسٹ ہوں, اور ہم نے سب کو ساتھ ملا کے ہی ہم نے مطلب آپ جانا ہے آگے. اور میں بتا دوں میں پارلیمنٹ کا نہیں ہوں, میں ایک بلدیاتی کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں. نمبر ایک, نمبر دو بات تھوڑی سی میں ایکسپلین کر دوں ایک بات اور, جو 5% کا ہے نا زبیر صاحب نے, تو یہاں پر جو ایک ہوتا ہے استرا اور ایک ویسترا مالما, مطلب ہے دو مالما ہے جس کو آپ مشرقی یا مغربی مالما کہہ سکتے ہیں, تو وہ جو 5% ہے وہ 2.5 ادھر ہو جاتی 2.5 یعنی 3000 سمتھنگ میں, تو 1500 سمتھنگ بھی اگر آپ ووٹ لے سکتے ہو ایک حصے سے مالموں سے, وہ بھی ایک الیجیبل کینڈیڈیٹ سٹی کونسلر اکارڈنگ ٹو پرسنل ووٹ سے بن سکتا ہے. تو نمبر ایک بات, اور نمبر دو بات یہ ہے بالکل ہمیں ایک ہونا چاہیے, اور میں انشاءاللہ آپ کے سب کے ساتھ بیٹھ کے کہتا بھی ہوں اور میں فل کوشش بھی کروں گا اور انشاءاللہ کروں گا بھی صحیح, کہ سب کو ایک پیج پہ لینا ہے. ہم نے مفاہمت کی ایک میں نے انشاءاللہ پالیسی چلنی ہے, ہم نے کوئی کسی کو مطلب ہے ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں کرنا کسی پارٹی بیس پہ خدا نخواستہ, ریلیجیس بیس پہ خدا نخواستہ, یا کسی اپنی کوئی اور بیس پہ. ہم دیکھیں جو اور اسپیشلی سویڈش اگر ہو یا اور بھی ہمارے ملک کے بھائی ہیں, فرض افغانی بھائی ہوں, عربک بھائی ہوں, صومالی یا کوئی اور بھی ہیں یا سویڈش بھائی بھی ہیں, تو سب کو ہمیں ایک لینا پڑے گا. یہ ایک سیاست اس کی مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے اور ہم سب کو ایک ہو کے آگے اسٹیپ لینا چاہیے. جی رسا,
2: کامران میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بیٹا آپ میرے بچوں کے برابر ہیں, میں تو آپ 77 کا ہوں. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو آپ کے کمیون کے اندر آپ کے علاقے کے اندر جو قوانین بننا جا رہے ہیں یا جو آپ کی یہ چھوٹی سی ایک کمیون کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو بجٹ پیش ہوتا ہے یا اس کے اندر جو چیزیں آگے بننے والی ہوتی ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ اپنی پارٹی کے ذریعے وہاں بیٹھیں اور سیکھیں اور اس کو باہر لا کے پبلک کو بتائیں, عام عوام کو بتائیں, وہ خواہ آپ سے راضی ہو یا نہ ہو, لیکن آپ ان کو میڈیا پہ ہر جگہ پہ لا کے بتا سکتے ہیں.
1: آپ نے بڑا اچھا کیا اس کو یادانی کرا دی. عدنان نے ہمیں جوائن کر لیا, پھر آخر میں زبیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی عدنان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
6: وعلیکم
3: السلام.
1: عدنان آپ نے بھی اس الیکشن کو دیکھا, آپ بھی مالمو گئے, آپ ریزلٹ سامنے آ گئے, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
6: راجہ صاحب یہ الیکشن تو کہتے ہیں کہ قسم کا ہو تو گیا ہے, مگر اس میں ٹائم لگے گا گورنمنٹ بننے میں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دو پارٹیاں ایسی ہیں جن کے آپس میں کچھ ڈفرنس ہیں, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے جاتا ہے, کیونکہ جس طرح پہلے شروع میں الیکشن تھا اس وقت تو سوشل ڈیموکریٹوں کی کیا کہتے ہیں نا ایک قسم کی کافی بڑی لیڈ تھی, مگر جب الیکشن کلوز آتا رہا ہے تو وہ 176 تو 173 ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ دو پارٹیاں ایسی ہیں کہ جن کا آپس میں تھوڑا ڈفرنس ہے, اور اس میں سے ایک پارٹی ہے جو کیا کہتے ہیں چاہے تو تبدیلی بھی کر سکتی ہے, جو پہلی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. تو یہ قریباً میرے خیال سے اتنا ہی ٹائم لگے گا ان کو بناتے ہوئے جتنا ڈینمارک میں لگ گیا تھا ये करीब दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक जाएंगे, उससे पहले ही पता चले नहीं पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट बननी है नेशनल प्लान पे। तो ये है कि तब्दीली आएगी, कुछ चीजों में चेंजेस आएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
1: सुबैर भाई, आपने सबकी बातें सुनी, आखिर में इसको किस तरह क्लोज करते हैं मीडिया के हवाले से?
7: देखें, अगर हम इसको समुद्र को कूजे में बंद करें तो बात वही आती है, सबने अपनी अपनी राय दी और यकीनी तौर पर बिल्कुल जो हमारे सीनियर भी यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने ये कहा कि ग्रुप बंदियां पाकिस्तानी सियासत उसको साइड पे रख के जो है हमें ऐसा लाए अमल तैयार करना चाहिए कि चलें अगर हम, हमारे पास एक कैंडिडेट कम्यून का है तो उसको कलेक्टिवली कम्यून के तौर पे सपोर्ट किया जाए, अगर दूसरे कोई सियासतदान खड़े हैं तो उनको किसी और कैटेगरी में, रीजन में, तीसरे को पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से हमारे तीन मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर वोट भी हासिल कर सकते हैं और हम साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। मगर हमारा आलमिया सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ पर किसी को वोट दिलाने की तहरीक से ज्यादा वोट ना देने की तहरीक जो है वो सरगर्म होती है और मुख्तलिफ ग्रुप्स मिलकर जो है वो किसी एक को हमेशा से इसी तरीके से करते हैं कि उस पर प्रेशर आता है कि वो अकेला बंदा रह जाता है और सात आठ लोगों का जो टोला होता है उसको अपना ग्रुप कहते हैं। वो हमारी कम्युनिटी के अंदर ये अगर चीजें खत्म हो जाएं और मुखालफतें और मुनाफिकतें खत्म हो जाएं तो यकीनी तौर पर अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं कामरान की इस बात पे बिल्कुल जो है मैं आमादा हूं कि हमें सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी को फोकस नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ पर दूसरे भी देगर मुस्लिम कम्युनिटियां हैं उनको भी फोकस करना चाहिए ताकि वोट बैंक ज्यादा हो। हमारी कम्युनिटी अगर यहाँ पर 6,500 पाकिस्तानी मालमों में तकरीबन रह रहा है तो हर किसी के पास शायद पार्लियामेंट का हक नहीं, वो कम्यून में और रीजन में वोट दे सकते हैं। तो हम उनको बावर कराएं कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपनी जो वो पर्सनल रोल जिसको कहते हैं कैंडिडेट को वोट देने की काबिलियत उसको बढ़ाएं। हमें ग्राउंड लेवल पे जाके उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि पर्सन वोट क्या होता है और कैसे डलता है, ताकि इलेक्शन वाले दिन जब वो बंदा अकेले जाता है वोट देने के लिए, उसकी कोई रहनुमाई नहीं कर पाता तो वोट हमारा जाया हो जाता है। जाया इस सूरत में होता है जाता पार्टी को है, लेकिन हमारे जो पर्सनल कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं पड़ पाते। तो कलेक्टिवली जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, और यहाँ मौजूद फैसल भी यहाँ मौजूद हैं जो मालमों में रहे हैं और हमारे साथ कामरान भी हैं, तो यकीनी तौर पर इनकी टीम जो है वो आगे काम करेगी और लोगों को यकजा करके और वोट हासिल करने के लिए कोशिश करेगी। उम्मीद यही की जाती है कि इंशाल्लाह अगले आने वाले इलेक्शनों के अंदर पाकिस्तानियों की जो है वो पोजीशन मजबूत होगी और इसी तरीके से सेंटर लेफ्ट पार्टियां आगे चलती रहेंगी। जी सर,
1: सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने छुट्टी वाले दिन सब ने अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में दोबारा शामिल होंगे। सबान, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम था जो सियासी भी था, गपशप की शक्ल में था, इंफॉर्मेशन के मुताबिक था। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिली, किस तरह इलेक्शन हुए, किस तरह वोट्स डाले गए, किस तरह आगे होने जा रहा है। ज़ुबैर साहब का तजिया बड़ा ज़बरदस्त था, शाह साहब ने नसीहत की नौजवानों को, इसी तरह अदनान ने भी अपना हिस्सा डाला, फैसल नौजवान है इन्होंने भी अपना तरीक़ाकार बताया, और बाकी कामरान जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने हिस्से की बातें की, और इसमें आखिर में जो हमें नज़र आया सब बात इतफाक़ और प्यार मोहब्बत की करते हैं।
8: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
9: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मज़ोसमाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मज़ोसमाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मज़ोसमाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मज़ोसमाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पर मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किए हैं। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूल एंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियाँ इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिसम पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है शायद।

मेरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है शायरी सच बोलती है।

0: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।